नमस्कार। FM बैंड 102.7 MHz ते ई आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा FM रेनबो चैनल है। अज सोमवार है, शक संवत 1948 दे आषाढ़ महीने दी 8 तारीख, तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 29 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:59 हो गए ने। साड़ी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। FM रेनबो अपने सारे श्रोतियां दा निघा स्वागत करता है।

2 बजे तो 2:30 बजे तक तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे। दिल आज शायर है, ढाई तो 3 बजे तक तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे उमंग दिल्ली केंद्र तो। ठीक 3 बजे तुसी सुनोगे FM रेनबो दिल्ली तो प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। शामी 4 बजे तुसी इंजॉय करोगे प्रोग्राम हैलो जलंधर। पांच बजे तुसी सुनोगे द्रौपदी मुर्मू जी दी हजूरी विच आयोजित होण वाला डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी दा प्रसारण। तुहाडे चेहरे ते मुस्कान लैके आएगा प्रोग्राम लव यू जिंदगी ठीक शाम 6 बजे। सात तो 7:30 बजे तक तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे फिल्मी दुनिया। साढ़े 7 to 8 बजे तक तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 दियां हाईलाइट्स। राती 8 बजे 8:02 ते तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे मसाला मिक्स। मैसेजेस बेस्ड फरमाइशी प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच तुसी अपने हिंदी ते पंजाबी सॉन्ग्स दियां फरमाइशां भेज सकते हो ठीक 9:02 ते। दिलां नूं ठंडक पहुंचाएगा शामी गजल प्रोग्राम 10 बजे तो 10:30 बजे तक। राती 10:30 तो 11 बजे तक तुसी इंजॉय करोगे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। ते FM न्यूज हेडलाइंस तुसी सुनोगे आपो अपने टाइम ते। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

तेरी किस्मत दा लिखिया तेरे तो कोई खो नहीं सकता। जे मेहर होवे उस दाते दी ता तेनू ओ भी मिल जूगा जो तेरा कदे हो नहीं सकता।

आधार पैन ते ओटीपी भेजो तां तुसीं की करोगे? जे जवाब तुरंत भेज दांगे है तां फिर तुहानूं मेरी गल जरूर सुननी पएगी, क्योंकि पंजाब पुलिस ने ना औरतां दे लई एक बहुत इंपॉर्टेंट साइबर अलर्ट जारी किया है। कुछ ठग एक रुपए वाली सरकारी स्कीम के नाते लोगों को कॉल ते मैसेजेस कर रहे हैं ते कहंदे ने कि एक रुपए का जो वेरीफिकेशन मैसेज है वह नहीं आया, इसलिए तुसी सानू आधार नंबर पैन कार्ड बैंक डिटेल या ओटीपी की जानकारी दो। ते पुलिस ने साफ कह दिता है कि ये फ्रॉड हो सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना है। ते ये चीज़ां असीं नॉर्मली तुहानू याद कराउंदे रहिंदे हां कि सरकारी स्कीम लई कोई भी अधिकारी फोन करके ओटीपी नहीं मंगदा है। आधार पैन बैंक अकाउंट नंबर जानकारी जिहड़ी है इहदी या फिर एटीएम डिटेल किसी अनजाण व्यक्ति नाल शेयर नहीं करना चाहिए। जे कोई कॉल करके जल्दी जल्दी डिसीजन लैन का प्रैशर पावे कि छेती छेती सानू ओटीपी दो तुहाडा काम रुकिया होया है, तो फिर तुसीं समझ जाओ कि वह बंदा जिहड़ा है ना रैड फ्लैग है। ते अजकल साइबर ठग नवे नवे तरीके लभ रहे ने, इसलिए सिर्फ अपने आप नूं ही नहीं बल्कि घर के सारे मैंबरस जिहड़ी सिस्टर्स है भैणां ने तुहाडियां वाइफ है बजुर्ग है सारियां नूं ये गल्लां जरूर दसो, क्योंकि फ्री दे हज़ार रुपए के चक्कर च अपने बैंक के लखां रुपए के जिहड़े ने तुसीं दाव ते ला दोगे खतरे च पा दोगे। तो चलो जी, स्मार्टफोन ही नहीं होना चाहिए, स्मार्ट तुहानूं भी होना चाहिए। इसलिए तो तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर अपनी दोस्त महक दे नाल। चलो जी, ट्यून कीता 102.7 मेगाहर्ट्स। अगला गीत असीं सुनते हाँ, किहड़ा गीत सुनीए? चलो जी, कमली गीत सुनते हाँ सुनिधि चौहान की आवाज़ के।

0: भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: श्री मोदी ने कल सेशल्स विच मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम नाल मुलाकात भी की थी। दोहां नेतावां ने भारत ते मॉरिशस विचकार चल रहे सहयोग की समीक्षा की थी ते भारत के विशेष आर्थिक पैकेज अधीन प्रोजैक्टां की प्रगति का जायजा लिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास ते प्रगति नूं विशेष अहमियत दिंदा है। उन्होंने कहा कि दोहां देशां विचकार सांझे प्रोजैक्ट मॉरिशस विच सेहत संपर्क निरंतर विकास ते समुद्री अर्थव्यवस्था नूं उत्साहित करनगे। वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बरतानिया के अपने दौरे तो बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच गए हैं। उन्होंने नाल एक उच्च पद्धरी भारतीय व्यापारक वफद भी गया है। इस फेरी का उद्देश दोहां देशों विचकार व्यापार निवेश और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय वफद एथेंस में स्टार्टअप्स नाल संबंधित कई समागमों में हिस्सा लेगा। भारत और ग्रीस के व्यापारक आगुओं नाल भी मीटिंग की जाएंगी, जिस विच बुनियादी ढांचे डिजिटल तकनोलॉजी रक्षा भोजन और खेतीबाड़ी वर्गे खेतरों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। वफद ग्रीस की कई प्रमुख कंपनियों का भी दौरा करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सन्मान समारोह में बहादुरी पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रपति हथियारबंद सेनावां केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों राज ते केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बलों के कर्मचारियों बहादुरी पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार उन्होंने सैनिकों को दिए जाते हैं जो असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। यह सम्मान दहशतगर्दी बगावत और सरहदी इलाकों में चुनौतियों विरुद्ध देश की निरंतर लड़ाई भी दर्शाते हैं। यह हवाबाजी समुद्री कार्यों मानवतावादी मिशन में दिखाई गई बेमिसाल बहादुरी भी मानता देंगे ने। इस तो पहला राष्ट्रपति ने इस महीने की 8 तरीक राष्ट्रपति भवन विखे सन्मान समारोह के पहले पड़ाव बहादुरी पुरस्कार प्रदान किए सन। ये खबर तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। तो यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अज नवी दिल्ली में संपूर्ण बाल सेहत प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। यह प्रोग्राम केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई कौंसल की 16वीं मीटिंग में शुरू किया जाएगा। सेहत मंत्रालय अनुसार यह प्रोग्राम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका उद्देश्य जन्म तो लैके 3 साल की उम्र के बच्चों लिए घर के नेड़े बेहतर सेहत संभाल सेवाएं प्रदान करना है। इस प्रोग्राम तहत नवजम्मे बच्चों ते छोटे बच्चों लिए मौजूदा घर घर जाके देखभाल प्रोग्रामां नूं जोड़िया जाएगा। इस विच बच्चों का शुरुआती विकास मावां की मानसिक सेहत जांच ते डिजिटल निगरानी भी शामिल होएगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सारे मंत्री विधायक ते पंजाब विधानसभा के स्पीकर अज श्री अकाल तख्त साहब विखे पेश होकर सिख कौम की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अगे बेअदबी विरोधी कानून बारे सूबा सरकार का पक्ष पेश करनगे।
2: मैनू तो बुलाया नहीं गया जी। सरकार का पक्ष जिहड़ा वो MLA साहब आन ते कैबिनेट मिनिस्टर रख के आउणगे, स्पीकर साहब भी जाणगे नाल, ते जो भी उन्हां वल्लों कोई सुझाव होगा जां कुछ SGPC वल्लों जां अकाल तख्त साहब वल्लों वो उहते विचार वटांदरा करांगे।
1: ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸੌਂਪੇਗੀ। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार जल्दी ही जथेदार नूं यह दसेगी कि किवें उन्हां दा अक्स खराब करन लई एक फर्जी वीडियो दी वरतों की गई।
2: असी जिहड़ी वीडियो दे मास्क वाला वीडियो सीगा उहनूं एक लैटर समेत वो वीडियो जिहड़ी अकाल तख्त साहिब भेजांगे कि इस तरह मास्क बन जांदे ने ते मास्क ला के एक नकली ते फर्जी वीडियो जिहड़ी बनाई गई है एक अपना लिखती रूप दे विच पक्ष असी अकाल तख्त साहिब नूं भेजांगे।
1: अमरीका ते ईरान जवाबी फौजी कार्रवाई रोकण ते दोहा च गलबात मुड़ शुरू करने लई सहमत हो गए ने। गलबात दा उद्देश होरमुज़ जल मार्ग बारे विवाद नूं हल करना है। दोहां देशां विचकार पिछले कुछ दिनां विच फौजी कार्रवाई तेज़ हो गई सी। अमरीका ने ईरान उपर जंगबंदी की उलंघना करन दा इल्जाम लाया ते उस ते फौजी ठिकाणे ते हमले कीते।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

बलदेव सिंह जी ने सानू मैसेज भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आसमान पर छाए बादलों ने भी नई कहानी लिख दी है, आपकी आवाज के साथ मिलकर जैसे हवाओं में रंगीन रूहानी लिख दी है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये सानू मैसेज भेजा है सुशील कुमार जी ने, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। तो हुण सानू जाना पएगा जी प्रोग्राम तो, थोड़ा जिहा सानू भी इजाजत चाहिए क्योंकि समा सानू इजाजत नहीं दे रहा। मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक प्रोग्राम इंजॉय कर रही थी जी, दिल अपना पंजाबी।

FM बैंड 102.7 MHz ते तुसी सुन रहे हो FM रेनबो ते हुन पेश ने FM न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की आजादी के 50 साल समारोह में मुख मेहमान वजो शामिल हुए। श्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलम नाल मुलाकात भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सम्मान समारोह में बहादरी पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अज नवी दिल्ली में संपूर्ण बाल सेहत प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। अमरीका अते ईरान जवाबी हमले रोकण अते कतर की राजधानी दोहा विच गलबात मुड़ शुरू करने लई सहमत हो गए ने। केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि फूड प्रोसैसिंग उद्योग किसानों की आमदन बढ़ाउण, पेंडू अर्थव्यवस्था नूं मजबूत करन अते नौजवानों लई रुजगार दे मौके पैदा करन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वेनजुएला विच बुधवार नूं आए भूचाल नाल मरण वालियां दी गिणती वध के 1450 हो गई है। 3200 तों वध लोग जख्मी होए ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा सारे मंत्री विधायक अते पंजाब विधानसभा दे स्पीकर अज श्री अकाल तख्त साहिब विखे पेश हो के बेअदबी विरोधी कानून ते सूबा सरकार दा पक्ष पेश करनगे। जलंधर के डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने दसिया कि 3 दिन पल्स पोलियो टीकाकरण प्रोग्राम के पहले दिन 28 जून को 5 साल तो घट उम्र के 93,479 बच्चों सफलतापूर्वक पोलियो की खुराक दी गई। भारत के स्टार बैडमिंटन खिडारी किदांबी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। अते भारतीय पुरुष हाकी टीम ने लंडन विच FIH प्रो लीग दे मैच विच पेनल्टी शूटआउट रही इंग्लैंड नूं 3-2 नाल हरा दित्ता है। एसएन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, बहार वाला प्रोग्राम जी। प्रोग्राम लेके हाजिर हो गई है जी गीत बहार। गीत बहार प्रोग्राम दे विच निवेदिता दा रहेगा साथ तुहाडे नाल। ते लो जी प्रोग्राम दी शुरुआत करन जा रहे हैं। मौसम भी बाहर सोना बनया होया है, ते प्रोग्राम भी शुरू करन जा रहे हैं जी गीत बहार। सो बहारा वर्गा गीत मैं तुहाडे लई प्ले करन जा रही हूँ। बहुत ही सुरीली आवाज़ आतिफ असलम दी आवाज़ दे विच। इंजॉय करते हैं गीत दिल दियां गल्लां।

अखियां चो हंजूर उड़ गए। ना जी ना, ऐसी नहीं, अखियां चो हंजूर उड़ने ने ऐसी क्यों रोई है भाई? ऐसी तो खुश रहना, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है जी, गीत बहार। वेल दोस्तों, प्रोग्राम गीत बहार दे विच मैं अज तुहानू एक टिप देना सी। जी बिल्कुल, और टिप है 2020-2020। यस, 2020-2020 दा मैं तुहानू टिप देना सी। ओ ये है कि साढ़े बच्चों बहुत सारे लोग ज़्यादातर स्क्रीन ते अपना टाइम लगाते हैं। कई बार वर्क प्रोफाइल यहो जहा हों या स्टडी का प्रेशर है, बहुत लंबा टाइम कई बार सानू कंप्यूटर अगे या लैपटॉप अगे या फोन ते टाइम स्पेंड करना पैंदा है, ते फिर साड़ी आँखा खराब हो जाएगियाँ। असी की करना है? असी करना जी 2020-2020। जी बिल्कुल, मैच नहीं खेलना 2020-2020, मतलब कि हर 20 मिनट के बाद असी 20 सेकेंड की ब्रेक लेनी है, तो 20 मीटर दूर तक असी अपनी नज़र लेके जानी है, स्क्रीन तो हटा के 20 मीटर दूर तक असी देखने की कोशिश करनी है। सो ये है जी 2020-2020 रूल, मतलब एवरी 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड की ब्रेक लेनी है, तो 20 मीटर दूर तक देखना। वो की होएगा, तुहाड़ियां अखां रिलैक्सेशन मिलेगी और थोड़ा जिहड़ा माइंड है वह भी थोड़ी देर लिए रिलैक्स हो जाएगा। तो 20 सेकेंड के बाद तुसी नवी एनर्जी दे नाल फिर तो अपने काम दे विच लग जाओगे, ते अखां नूं भी थोड़ा सुकून मिलेगा। यस, करके देखना 2020-2020 रूल है, जिहड़ा बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत लाहेवंद है, अपना के देखो, क्योंकि 20 सेकेंड बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, छोटा जिहा टाइम है और फटाफट गुजर भी जाता है, तो तुहाड़ियां अखां लई तुहाड़े माइंड दे लई बहुत ही वधिया हुंदे ने इह 20 सेकेंड। यस, प्रोग्राम नूं अगे तोरदे हां जी, गीत सुनदे हां अरिजीत सिंह दी आवाज़ दे विच, मैं हूँ साथ तेरी।

पहला जो टिप मैं देना सी वो है 5 सेकेंड पॉज। दोस्तों 5 सेकेंड बहुत ही घट टाइम है, एवें निकल जाते हैं 5 सेकेंड, पर तुम्हें पता है कि 5 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कई बार तो साढ़े लाइफ के डिसीजन भी 5 सेकेंड से निर्भर हो जाता है। वह कितना, कई बार की है कि सानू कोई बहुत इरीटेट कर रहा, गुस्सा कर रहा है ना, कोई नजायज़ ही सानू परेशान कर रहा है, तो तुसी रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ 5 सेकेंड का पॉज लेना। थोड़े सामने कोई ईमेल आई है जिदे विच तुहाडे बॉस ने जी तुहानू बहुत डांटिया है या चलो तुहानू सस्पेंड कर दिता है, बहुत ज़्यादा तुहानू ईमेल इन्नी दुख वाली आई है, या तुहानू कोई टैक्सट आया, कोई कमेंट आया, कोई मैसेज आया, दैन स्टार्ट काउंटिंग 5, 4, 3, 2, 1। जो तुसी हौली हौली 5 सेकेंड अपने आप ते कंट्रोल कर लोगे तो ये की होएगा, थोड़ा मन अंदरों शांत हो जाएगा और तुसी एकदम रिएक्ट नहीं करोगे। और तुहानू पता है कि यह जड़ा एकदम असी रिएक्शन कर जाने ना, ये कई बार पूरी जिंदगी सानू रिग्रैट दे विच गुजारनी पैंदी है। टाइम कुछ भी नहीं है, 5 सेकेंड कुछ भी नहीं होंगे, और 5 सेकेंड तुहाडे दिमाग नू शांत करन दे लई बहुत होंगे ने। सो 5 सेकेंड अपना गुस्सा कंट्रोल करो, जो तुहानू कोई इरीटेट कर रहा है, तुहानू कोई गुस्सा चढ़ा रहा है, तो 5 सेकेंड अपने मन नू बस पकड़ के रख लो कि नहीं तू रिएक्ट नहीं करना, नहीं रिएक्ट करना। और 5 सेकेंड तो बाद जड़ा तुसी डिसीजन लोगे ओहो तुहाडे लई ते तुहाडे आले दुआले लई चंगा होएगा, वधिया होएगा, तुहाडी सेहत लई वधिया होएगा। सो प्रोग्राम गीत बहार ते गीत बहार दे विच विशाल मिश्रा कुछ कह रहे ने, आओ सुनदे हां।

एंजॉय करो जी प्रोग्राम गीत बहार। तो दोस्तों प्रोग्राम गीत बहार में आज असी गल कर रहे डिजिटल सिक्योरिटी और अवेयरनेस की। वेल दोस्तों जो असी कितने भी पासवर्ड रखना होंगे ना तो असं कन्फ्यूज़ हो जाने कि किड़ा पासवर्ड रखिए, और कई लोगों की आदत होंगी है कि इको ही पासवर्ड सारी जगह चला देंगे, सारे ATMs के लिए भी कितने भी जिन्हें भी अकाउंट है असं सारे कितने इको पासवर्ड चला देने, पर तुम्हें पता है ये किन्नी वड्डी गलती है। सो इको ही पासवर्ड असी सारी जगह ना चलाइए, क्योंकि जेकर किसी एक पता लग गया तो दूजी जगह तीजी जगह भी उही ट्राई करके देखेगा। सो अपना पासवर्ड कोशिश करनी है कि हर जगह अलग अलग होए। तो फिर तुसी सोचोगे इन्ने पासवर्ड असी याद किदा रखांगे और इन्ने पासवर्ड असी जनरेट किदा करिए। सो ओदी मैं तुहानू अज एक टेक्निक दसन जा रही हूँ। दोस्तों पासवर्ड कभी भी ए नहीं कि अपना नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखिया तो चलो जी कम खत्म पासवर्ड बन गया, पर नहीं। तुसी एक मैं तुहानू यूनीक जिहा तरीका दसदी हाँ जिदे नाल तुहाडा पासवर्ड है जिहड़ा वो वधिया भी बनेगा तो कोई उस तक पहुँच नहीं सकेगा। सो तुसी की करना

स्वागत है जी प्रोग्राम दे वेज। प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार दे वेज। निवेदिता है आज तो हाड़े नाल। वेल दोस्तों, प्रोग्राम गीत बहार वेज अज असी गल कर रहे सी किवें असी अपने आप नू डिजिटली अवेयर रखना और साइबर सिक्योरिटी दे वेज किवें अपने आप नू असी एनरिच करना है। सो गलबात जिहड़ी हुण असी करन जा रहे हां ओह है रूल ऑफ थ्री दी। दोस्तों जिवें कि तुसी जानदे हो कि हुण असी अपने आस पास दीआं खबरां दे लई अवेयरनैस दे लई पूरी तरह असी फोनस ते लैपटॉप ते कंप्यूटर ते डिपेंडेंट हो गए हाँ, और इस सोर्स ईजीली अवेलेबल है इसलिए सानूं इत्थों इनफॉर्मेशन कलैक्ट करनी आसान लगती है। मुश्किल लगता है कि अखबार चुकीए जां रेडियो सुनीए जां टीवी दे अगे बैठीए, सानूं फोन दे विच ही इनफॉर्मेशन फटाफट पहुँच जाती है ते असी जो सानूं मिलता है जो सर्व हुंदा है असी उहदे ते विश्वास भी कर लैंदे हाँ, है ना, इदां ही हुंदा ना। सो बहुत अच्छी गल है जेकर तुहाडे कोल हैंडी इनफॉर्मेशन दा सोर्स है, तुसी जदों चाहो जो मर्जी उहदे विचों सर्च आउट कर सकते हो, बहुत वधिया है। बट अवेयरनैस तां इत्थे भी चाहीदी है ना। सो इत्थे जिहड़ी अवेयरनैस है उह असी हासिल करांगे रूल ऑफ थ्री दे नाल। जो सानू सर्व हो रहा असी वो ही ग्रैप नहीं करना, वो ही असी अपने दिमाग के अंदर नहीं बिठाना, असी फॉलो करना है जी रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री कहता है कि असी एक इनफॉर्मेशन जिहड़ी लै रहे हैं असी उन्हों थ्री सोर्सिस तो वेरीफाई करांगे जी। तुसी सबसक्राइब किया होया है किसी चैनल नू या किसी साइट नू तो तुसी की करना है जी, एक नैशनल, एक इंटरनेशनल ते एक तुसी ऐसी वैबसाइट या ऐसा कोई पोर्टल तुसी सबसक्राइब करके रखना है जिदे विच तुहानू इन्वेस्टिगेटिव इनफॉर्मेशन मिलती है, डीप डाइव इनफॉर्मेशन मिलती, जिदे विच अजिहे आर्टिकल होन जिदे विच बहुत जिहड़े हंडे होए राइटर्स ने उन्हां दे आर्टिकल आंदे होन, उहदे नाल तुहानू इनफॉर्मेशन दी डैप्थ दे किसी भी न्यूज़ दी डैप्थ विच इनफॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी न्यूज़ है तुसी उन्हों एक सोर्स तो पढ़ लिया सुन लिया तुसी विश्वास कर लिया, नहीं फिर उन्हों दूसरे दे नाल क्लैरिफाई किया जाए, फिर तुसी उन्हों जिहड़ा डीप डाइव सोर्स है वह तुसी सबसक्राइब किया होया जां पढ़ रहे हो उहदे तो तुसी उन्हों क्लैरिफाई करो, फिर उस इनफॉर्मेशन ते विश्वास करना चाहिदा है। हमेशा रूल ऑफ थ्री नू अपने दिमाग च रखो, जदों थानू तीनों जगह तो इनफॉर्मेशन सही मिल गई कि हाँ यह चीज़ एक्चुअली यही है, ये नहीं कि एक ने जो क्या वह मान लिया, असी नैशनल, इंटरनेशनल और इनवेस्टिगेटिव सोर्स तो उन्हों क्लैरिफाई करके फिर जे असी रीपोस्ट करना है जां अगे खबर फैलानी है तो फिर असी उस पासे नू तुरीए, है ना। रूल ऑफ थ्री नू हमेशा फॉलो करना जरूरी है। अखा बंद करके जो सानू दिता जा रहा, जो सुनाया जा रहा वो नहीं सुनना, क्योंकि असी रिस्पोंसिबल सिटीजन हाँ जी। ते हुन अलका याग्निक ते उदित नारायण की आवाज़ के आओ इंजॉय करते हैं एक गीत।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम गीत बहार ते। गीत बहार दे विच एक लास्ट टिप है जड़ा वो मैं तुहाडे लिए लेके आई हाँ, जड़ा कि तुहानू तुहाडे वर्क प्लेस ते भी एनरिच करेगा और तुहाडी अवेयरनेस भी वधाएगा। वो है जी 15 मिनट मॉर्निंग स्कैन। 15 मिनट मॉर्निंग स्कैन ये कहता है कि जदों भी असी दिन की शुरुआत करनी है, चाहे असी दुकानदार हाँ, चाहे असी नौकरी पेशे वाले हाँ, जेड़ा भी काम असी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड दे विच हाँ, जिस भी इंडस्ट्री दे विच हाँ, जदों असी अपने वर्कप्लेस ते जाइए, दुकान ते जाइए, ऑफिस जाइए या फैक्ट्री जाइए, जिथे भी असी काम करते हाँ, तो पहले 15 मिनट काम शुरू करन तो पहला फटाफट ये नहीं कि जाके असी फटाफट जो दिन का काम है शुरू कर लेना है, पहले 15 मिनट असी देने हैं स्कैनिंग नू। स्कैनिंग इंडस्ट्री रीडिंग कि साढ़े आ साड़ी जो इंडस्ट्री है ये की हो रहा है, की होने वाला है, की वापर है, मतलब असी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है जड़ा वो 15 मिनट लिए स्कैन करना है। जे रिलेटेड रीडिंग्स ने वो पढ़निया ने, जड़े भी सोर्स तो थानू इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हासिल करनी है। 15 मिनट पहले 15 मिनट असी स्कैनिंग करनी है अपनी इंडस्ट्री दी कि इहदे विच चल की रहा है, की चलन वाला है, अज की खास होने वाला है। सो जदों तुसी अपने आप नू एनरिच रखोगे, अवेयर रखोगे इंडस्ट्री दे विच, ते फिर कोई भी दुनिया की ताकत थानू अगे वधन तो नहीं रोक सकती। सो 15 मिनट देने हैं अपनी एनरिचमेंट नू, अपनी इंडस्ट्री दे विच अपनी जिहड़ी काबिलियत है उनू वधाना है। वधाना किवें है, जदों असी उहदे लई अवेयर रहांगे। ये नहीं कि आपां बस फोकस है साढ़े काम ते असी आए ते फटाफट काम शुरू कर दिता, नहीं तो 15 मिनट पहला निकल आओ, पर 15 मिनट मॉर्निंग स्कैन करनी जरूरी है अपनी इंडस्ट्री दे लई, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल भी है। ज़रूर करो अपनी इंडस्ट्री दी स्कैनिंग, इंडस्ट्री दी स्कैन रीडिंग जरूर करनी है। और दोस्तों इस दे नाल ही समा हो गया प्रोग्राम गीत बहार दे विच तुहाडे तो इजाजत लैण दा, पर मैं किते नहीं जा रही हूँ, कुछ ही पलां दे बाद अगले प्रोग्राम पंजाबी तड़का दे विच फिर होएगी मुलाकात। तो फिलहाल मैं तुहाडे लई प्ले करन जा रही हूँ जी इस प्रोग्राम का यह लास्ट गीत।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज थे, तुसी सुन रहे हो एफएम रेनबो ते हुन पेश ने एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की आजादी के 50 साल समारोह में मुख मेहमान वजो शामिल हुए। श्री मोदी ने मॉरिशियस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामकुलम नाल मुलाकात भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शामी राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सम्मान समारोह में बहादरी पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय सेहत अते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अज नवी दिल्ली विच संपूर्ण बाल सेहत प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। अमरीका ते ईरान जवाबी हमले रोकण अते कतर की राजधानी दोहा विच गलबात मुड़ शुरू करन लई सहमत हो गए ने। केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि फूड प्रोसैसिंग उद्योग किसानों की आमदन वधाउण, पेंडू अर्थव्यवस्था नूं मजबूत करन अते नौजवानों लई रुजगार के मौके पैदा करन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वेनजुएला विच बुधवार नूं आए भूचाल नाल मरण वालों की गिणती वध के 1450 हो गई है। 3200 तों वध लोग जख्मी होए ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा सारे मंत्री विधायक अते पंजाब विधानसभा दे स्पीकर अज श्री अकाल तख्त साहिब विखे पेश हो के बेअदबी विरोधी कानून ते सूबा सरकार दा पक्ष पेश करनगे। जलंधर दे डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने दस्या कि 3 दिना पल्स पोलियो टीकाकरण प्रोग्राम दे पहले दिन 28 जून नूं 5 साल तो घट उम्र दे 93,479 बच्चियां नूं सफलतापूर्वक पोलियो दी खुराक दित्ती गई। भारत दे स्टार बैडमिंटन खिडारी किदांबी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट दे पुरश सिंगल्स दे फाइनल विच जगह बना लई है। भारतीय पुरुष हाकी टीम ने लंडन विच FIH प्रो लीग दे मैच विच पेनल्टी शूटआउट राही इंग्लैंड नूं 3-2 नाल हरा दित्ता। एसन FM न्यूज़ हेडलाइंस।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है जी पंजाबी तड़का। वेल पंजाबी तड़का विच निवेदिता रहेगी आज तुहाडे नाल। तो दोस्तों तुसी जानते हो कि पंजाबी तड़का प्रोग्राम है साडा फोन इन प्रोग्राम, मतलब तुसी सानू कॉल कर सकते हो, अपनी पसंद दा गीत सुन सकते हो। जेकर कोई गलबात, कोई सलाह मशवरा, कुछ भी तुसी साडे नाल कोई किस्सा, कोई कहानी साझा करना चाहते हो या साडे जरिए लिसनर्स दे नाल गलबात करनी चाहते हो तो वह भी कर सकते दो। तो उहदे लई करना की है जी, नंबर डायल करना है, नंबर है 0181 28 13 074। यह नंबर डायल करके तुसी साडे नाल राबता कायम कर सकते हो। सो प्रोग्राम दे विच सारे गीत चलणगे जी तुहाडी पसंद दे, पर पहला गीत होएगा मेरी पसंद दा। सो मैं प्ले कर रही हाँ अपनी पसंद दा गीत, ते उस तो बाद फिर फटाफट तुसी हो जाओ जी शुरू, नंबर मिला लो 28 13 074। तो लो जी मैं इंतजार कर रही हाँ तुहाडी कॉल दा, ते तद तक तुसी एंजॉय करो अमृत मान ते जैसमीन अख्तर दी आवाज़ दे विच जागो।

0: एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो ते दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का। वेल दोस्तों पंजाबी तड़का विच पहुंच चुके ने पहले कॉलर गल कर दे ना दे नाल। हेलो
1: हेलो मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। ते कौन दोस्त गल कर रहे हो? स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। ते फिर अज धुप तां घट हैगी है, मौसम दा एंजॉय कर रहे हो?
1: नहीं जी, मालक ने एसी लाता सारे वास्ते
0: कोई भी ऐसा चाइल्डहुड दा मोमेंट दसना जिन्हों तुसी आज भी सोच के तुहाडा दिल करदा है कि वह दिन वापस आ जाए, चाहे गर्मी दी छुट्टियां दी गल होवे या गली च खेडना होवे, कोई भी ऐसी मैमरी बचपन दी जिहड़ी तुहानू अज भी तुहानू अंदरों टुंबदी है कि यार वह दिन आ जाए, ऐसी मैमरी।
1: असीं बचपन च क्रिकेट खेलदे हुंदे
0: सी। अच्छा,
1: फिर मेरी हॉबी है ते नाल पतंगा उड़ाउणी है।
0: पहली बार हासिल हुई हो जेड़ा काम असीं पहली बार कीता होवे उमर याद रहिंदा
1: है ना। आपां नूं लोकां नूं टिकटां नहीं मिलदियां हुंदियां सी,
0: जल्दी
1: काम करनगे सारी 10 टिकटां सानूं दे दो, तुहानूं टाइम से मिल जूगा काम जी।
0: ठीक,
1: टिकटां नहीं मिलदी होंदी सी।
0: टाइम याद आंदा है ना, पुरानियां गल्लां याद आंदियां ते दिल करदा कि ओही दिनां च फिर वापस मुड़ जाइए।
1: हां
0: नहीं, गीत दसो केड़ा सुनना?
1: गीत रफी दा जेड़ा मर्जी ला दियो। ते वैसे बेटे गल कहने चाहना मैं।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मतलब के जिता अही बाजा बदल बदल के कॉल कर दे ना, सारे तराई कर दे मंडी दे मेरे दोस्त भी, कोई बंदा तीन तीन बारी कॉल ला लंदा नाले अपना नाम नहीं दसदा।
0: ओहो,
1: जिदा मैं बोलदा ना उन्हें फिर कहने मैं प्रवीण बोलदा गोपाल नगर तो जी, इदा साडी कॉल नहीं लगदी।
0: चलो जी, ऐदां दे काम ना करिया करो जी, नाराजगियां हो जांदियां ने फिर, है ना।
1: मतलब के आवाज पहचानिया करो, सारे बंदे कहंदे मैडम नूं आवाज पहचाननी चाहीदी है।
0: ठीक है, हुण असीं ए वी कला लेके आने अपने अंदर, है ना।
1: हां जी हां, चलो मेहरबानी जी।
0: ठीक है जी, थैंक यू सो मच कॉल करन दे लई। लो जी, इन्होंने फरमाइश की थी है मोहम्मद रफी की आवाज़ के गीत सुनना चाहते हैं,

0: प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी पंजाबी तड़का ते अगले कॉलर पहुंच चुके ने साडे तक गल कर देना दे नाल। हेलो
1: हेलो मैम जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
1: मैडम मैं प्रभजोत कौर, जलंधर हवा मंडी तो।
0: स्वागत है प्रभजोत जी, की हाल चाल ने?
1: हाँ जी मैडम बहुत वधिया, तुसी सुनाओ ताडा की हाल
0: जी? तुसी वधिया ते फिर असी भी वधिया, लिसनर्स वधिया ते असी भी वधिया, है ना?
1: मैम ताडी आवाज बहुत प्यारी है।
0: अच्छा, थैंक यू सो मच, तुसी भी बहुत प्यारे। अच्छा की कर रहे हो फिर हुन? सब तो पहला केड़ी रेसिपी बनानी सीखी सी? सब तो पहला की बनाया सी जदों कुकिंग दे विच आपां हाथ पाया, मम्मी ने सब तो पहला की सिखाया सी?
1: सब तो पहला मैं ना गोभी की सब्जी बनाई
0: सी। आए हाय, आलू गोभी?
1: हां जी हां जी, आलू गोभी।
0: सड़ गई सी कि ठीक बनी सी?
1: नहीं मैम ठीक बनी सी, टेस्टी बनी सी, पसंद आई सारा नूं।
0: ठीक है।

0: पहले चाह नहीं बनानी सिखाई मम्मी ने?
1: नहीं, वो तो मैडम अपने आप ही आ गई सी।
0: वो अपने आप ही आ गई सी क्योंकि
1: मम्मी वाल सीख
0: के सफर सफर दी शुरुआत तो चाह तो हुंदी हुंदी है ना। चाह, फिर चावल, हैं फिर फुलके ते फिर सब्जियां।
1: हां जी हां जी।
0: फिर गोभी दी सब्जी विच तो तुसी हुन परफेक्ट हो गए होने।
1: हां जी हां जी, मतलब कि हुन तो मतलब कि सब कुछ काम कर लेदा, कुकिंग वगैरह दा मेरिट हो गई है मतलब कि।
0: ते ओ टाइम भी याद होना जो तो पहली चपाती बनाई सी।
1: हां जी,
0: ओ किद्दां दी बनी सी? चपाती बनाई हो वे, ओ दा वैसे ही कदी नहीं भूलदी क्योंकि ओ दी जड़ी शेप हुंदी है ना, ओ पता नहीं केड़ा नक्शा बनदा है
1: ना। मतलब कि जदों असीं रोटी बनाई दी सी ते साडे पापा कोल बैठे हुंदे सीगे,
0: ठीक। यही जेडिया छोटिया छोटिया है ना एडवाइस मिलदी है, ये सानू परफेक्ट कर देंदी है।
1: हां जी हां जी, हुण साडे हस्बैंड जी कहंदे सानू
0: चलो फिर मैनू दसो अज गीत केड़ा सुनना। ठंडी ठंडी हवा चलदी पी, हुण तुसी सिली सिली हवा मंगन लगे हो। ठंडी हवा चलदी पी तुहाडे इलाके च के नहीं?
1: हां जी,
0: मैं क्या हवा ठंडी चलदी पी के नहीं? गर्मी बहुत हुई हुई है। चलो एंजॉय करो जी गीत सिली सिली हवा। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।

0: आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी ट्वेंटी महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
1: प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी पंजाबी तड़का ते पंजाबी तड़का दे विच लगातार दोस्तों।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी तड़का ते पंजाबी तड़का दे विच साडे कोल लगातार कॉल्स पहुंच रही ने जी ते अगले कॉलर भी पहुंच चुके ने गल करदे आ ना ते नाल हेलो
1: सच्ची चुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से
0: जी
1: खुशबू आ नहीं सकती मैडम जी कभी कागज के फूलों से
0: क्या बात है पर कागज के फूलों ते ना सेंट स्प्रे कर लेना ओना ओना विच भी अपन महक ले आ देनी है क्या बात है सर क्या बात ज्यादा हो गया है
1: छोटे होंदे सी ना असि अगे अगे दौड़ना साडी माता ने पिछे पिछे दौड़ना
0: डंडा लेके दौड़ना
1: डंडा लै गई बहुत मतलब जिंदगी दे दिन याद आंदे जदो मोया नहा लाया रोटी खा ला नहीं भुख होनी ता भी कहना नहीं क्यों नहीं खानी हूं तो जो व्याह हो व्याह तो पता जानी एक बार पूछती खानी कहनी नहीं खानी ना कसम खा
0: अज तुम रोटी नहीं मिलनी जाके जिदा दी गल करते पे हो ना अज रोटी थोड़ी कैंसल है
1: नहीं मैडम बचपन जरा ना बहुत मजेदार मां का प्यार मिलता ही नहीं मैडम
0: जी बिलकुल
1: कितने मां प्यो बाप अपने पिता की जड़ी फटकार मां का प्यार असी अगे दौड़ना उन्हें कहना कमीज लाके छोड़ देनी स्कूल नहीं जाना बस सब परे छोड़ देना मां ने संभालना सारा
0: जी बिल्कुल
1: फिर अभी आगे सवेरे सन तैयार मिलना सब कुछ
0: ये नखरे मां बाप ही सहन कर सकते हैं और कोई नहीं करता
1: हाँ बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि मां प्यो की कदर जरूर करो जी
0: बिल्कुल
1: बहुत खुश नसीब होते हैं जो मां बाप के करीब होते हैं
0: जी ते आज फिर
1: एक दिन तरीफ की थी मैं फिर रखिया तीसरे नंबर

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी। होम स्वीट होम ते होम स्वीट होम दे विच मैं आ गई हाँ जी वापस ते लैके चलती हाँ तुहानू थाडे किचन दे विच जी। बिल्कुल अज असी किचन च बनावांगे कोल्ड सैंडविच, क्योंकि गर्मियां दे विच कोल्ड सैंडविच ने जिहड़े बच्चियां दी पहली पसंद बन जांदे आ। हॉट खाण नू नहीं मन करदा, गर्म नहीं बच्चे खांदे, तां तुसीं कोल्ड सैंडविच बना सकदे हो जो कि टिफिन दे विच भी बहुत वधिया रहिंदे ते बच्चे गर्मियां दे विच बहुत एंजॉय करदे आ। हुण बनाना किद्दां कोल्ड सैंडविच, मैं हजे एक परसन दे अकॉर्डिंग तुहानूं रैसिपी दस रही हाँ। ब्रैड लैनी है जी दो स्लाइस ब्रैड दे वास्ते असी दही लैना एक वड्डा चम्मच, बरीक कटी हुई शिमला मिर्च लैनी है एक छोटा चम्मच, बरीक कटी हुई गाजर एक छोटा चम्मच, उबले हुए मक्की दे दाने स्वीट कॉर्नस ने जिहड़े ओह असी एक छोटा चम्मच लैने हैं, ते इस तों इलावा काली मिर्च पाउडर ते काला नमक ये असी लैना एक परसन लई जदों असी एक स्लाइस बनाना है। और हुण इहनूं करना की है जी, बॉल दे विच तुसीं दही लै लैना, उहदे विच बरीक कटियां होईयां सब्जियां, मक्की दे दाने, काली मिर्च पाउडर ते काला नमक पा के चंगी तरह मिक्स कर लो। ते दोनों ब्रैड दे किनारे कट लैने हैं क्योंकि कोल्ड ब्रैड है ते जिहड़े किनारे है ना एजिस ओह नहीं खाधे जांदे ठंडे होण करके। ते इस ते तुसीं तैयार कीता होया दही सब्जी दा जिहड़ा मिश्रण है ओह लगा देना ते उपर दूजी ब्रैड रख दो। लो जी तैयार हो गया तुहाडा सैंडविच, सेंटर दे विच कट दिओ और कट के सॉस या चटनी दे नाल तुसी अपने बच्चे नूं सर्व कर सकते हो, और बच्चे ही नहीं बुजुर्ग भी, और तुसी भी खुद भी एंजॉय कर सकते हो। कोल्ड सैंडविच गर्मियां विच बहुत चंगे लगते हैं और हेल्दी भी होंदे हैं क्योंकि इहदे विच दही भी पाया होया, असी सब्जियां भी पाईयां होईयां ने।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी, होम स्वीट होम। दोस्तों कई बार की होंदा है कि असी ना वहमी हो जाने है ना, किसी चीज़ को साफ करन लगते हैं तो बहुत करी जाने हैं, पर नहीं, कई बारी जरूरत तो ज़्यादा सफाई ते जरूरत तो ज़्यादा जड़ा वहम है वो भी साड़ी जड़ी डिश है, साड़ी जड़ी खुराक है, उन्हें खराब कर देता, वो स्वाद नू खराब कर देता। सो ये छोटी छोटी जड़ी गल्लां ने जड़ी साड़ी अणगहलियां ने साड़ा स्वाद खाने का खराब कर देंदियां ने, उहदे बारे अज असीं गल करांगे। दोस्तों अक्सर की होंगे कि कई बार जो अभी रायता बना के रखना होंगे ना, तो दही च आप नमक पहले ही मिला के रख देने कि सारा काम आप डन करके रख दिए, बस फिर बाद में सर्व भी करना है। पर नहीं, दही दे विच पहला नमक मिला के नहीं रखना, ये की नुकसान है। जो असी दही दे विच पहला नमक मिला दें ना, तो नमक मिलाने दे नाल दही पानी छड्डन लगता है और रायता पतला हो जाता है, और दही का जिहड़ा पानी है ना प्रोटीन कैल्शियम तो कुछ विटामिन का चंगा स्रोत होंदा है, तो जो पानी छड्डन लग जाता है तो फिर आप कई बार पानी नितार के सुट दें, और ये कई पोषक तत्व ने जोड़े वह असी सुट दें। सो दही दे विच पहला नमक मिला के नहीं रखना, जो असी सर्व करना है उदों ही उपरों नमक मिलाया जाए, पहला नहीं मिला के रखना, क्योंकि ये दही पतला भी हो जाएगा तो वो पोषक तत्व ने जोड़े वह खराब हो जाएंगे। और कईयों वहम हुंदा है कि जो आप तड़का लगाना हुंदा है तेल नूं चंगी तरह गर्म करते हैं जी, जब तक धुआं निकलना शुरू ना हो जाए तद तक असीं मसाले पाते नहीं विच, पर नहीं, अजिहा भी नहीं करना। तेल या घिओ नूं धुआं निकलण तक गर्म करना सही नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गर्म तेल दे विच असीं मसाले पाने हैं तो इहदे नाल मसालियां दा रंग स्वाद ते सुगंध है जिहड़ी वो खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल रंग भी खराब कर देता है, स्वाद तो उसकी जिहड़ी महक है वह भी खराब कर देता है। सो ये की होंगे मसालियां दे विच मौजूद जिहड़े एंटीऑक्सीडेंट है और पौष्टिक तत्व जिहड़े होंदे ने वह भी नष्ट हो जाते हैं, और ये साढ़े स्वास्थ्य नूं खराब करता है। और इसलिए की करना, पिसे हुए जिहड़े मसाले ने वो सिर्फ गर्म तेल दे विच पाए जाण, बहुत ज़्यादा धुआं निकलते तेल दे विच नहीं पाने, और ये बैटर ये है कि तेल पहला ही असी साड़ के रखिए, गलका के रख लीए, और बाद विच हल्का गर्म करके तेल उहदे विच मसाले पाए जान। और कईयां दा जो असी आटा गुनदे आ पहला थोड़ा जिहा गुन के आप रख दें कि चंगी तरह मिक्स हो जाए, तो फिर बाद विच मुक्की देवांगे, और ये कई बार काफ़ी टाइम असी रखी रखते हाँ, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये ग्लूटेन है जड़ा वो ज़्यादा विकसित हो जाता है, तो रोटियां सख्त तो चबान दे विच मोटियां लगदियां जो असी आटा ज़्यादा देर रखी रखते हैं। सो असी की करना है जी, नरम तो फुलियां हुई रोटियां दे लई आटे नूं ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी 30 मिनट तक रैसट दे सकते हो, इस तो ज़्यादा रैसट नहीं देनी आटा गुन्नण वेले। ये भी एक टिप हो गया। और एक है कि कईयों नूं वहम हुंदा कि चावल जो असीं बनाने असीं बार बार धोने किन्नी वारी धोंदे हाँ, और ज़्यादा चावल धोण दे नाल की हुंदा है उहदी जिहड़ी सतह है उहदे ते स्टार्च मौजूद हुंदा है वह परत काफ़ी हद तक निकल जाती है, और बहुत सारे विटामिन ते खनिज भी घट हो जाते हैं। सो चावल नूं सिर्फ एक या दो बार धोना ही काफ़ी है, बार बार 5-6 बार 8-10 बार सानूं चावल धोण की जरूरत नहीं हुंदी।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है मिड डे मेलोडीज। मिड डे मेलोडीज ते इस मेलोडियस सफर दे विच निवेदिता रहेगी तुहाडे नाल। और दोस्तों आज दी दोपहर बेहद खास है क्योंकि आज संगीत दी तिजोरी दे विचों असी 60, 70, 80 दे दहाके विचों ओ सदा बहार गीत चुन के लेके आए हैं जिदे विच गहणियां दा जिक्र हुंदा है। जी दोस्तों कहंदे ने कि औरत दा शिंगार उसदे गहणियां तो बिना अधूरा हुंदा है। पर जेकर असी 60s, 70s, 80s दे गीतां दी गल करिए, बॉलीवुड सॉन्ग्स दी गल करिए, तां इह गीत वी गहणियां तो बिना अधूरे सन। अक्सर इन्हां गीतां विच गहणियां दा जिक्र आंदा है। वैसे भी जो गहने ने किसी औरत दे शिंगार दा अहम हिस्सा है, पर जदों इह गहने किसी शायर दी कलम विचों निकलदे ने ते इह गीतां नूं वी शिंगार दिंदे ने। सो अजिहे गीतां दा अज असी आनंद माणांगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रही हाँ। पहला गीत असी इंजॉय करांगे बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी।

बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। दोस्तों इस गाने दे तुन कदे भी कन्ना विच पै जावे तो पैर अपने आप ही थिरकन लग जाते ने। तो चलो मत्थे दी बिंदिया तो हटके गल करते हैं पायल दी या झांजर दी। दोस्तों पिंड दी गली होवे जां शहर दा रस्ता, जद कोई हसीना अपनी पायल छनकाउंदी होई लंघदी है तां दिलां दी धड़कन दा रुकना तो लाजमी बन जाता है। सो आओ सुनते हैं सुनहरे दौर दा एक अजिहा गीत जिथे पायल दी मिठी चनकार दी गल कीती गई है।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो ते दोस्तों प्रोग्राम चल रहे हैं मिड डे मेलोडीज ते दोस्तों मिड डे मेलोडीज दे विच अज असीं गल कर रहे हां उन्हां गीतां दी एंजॉय कर रहे हैं वो गीत जिस दे विच गहणियां दा जिक्र हुंदा है। सो दोस्तों उस टाइम ते जो गहने सन वो गीतां दा खास हिस्सा सी अहम हिस्सा सी अक्सर जिक्र हुंदा सी गहणियां दा। ते हुण गल करदे आं झुमके दी। दोस्तों कुछ गहने अजिहे हुंदे ने जो सिर्फ खूबसूरती नहीं वधाउंदे बल्कि दो दिलां दी रूह नूं एक दूजे दे नज़दीक भी कर देंदे ने। सो अजिहे ही भावां नूं अजिहे ही एक्सप्रेशनस नूं गीतां दे विच परो के पेश कीता जांदा है। ते लो जी अगला गीत मुहम्मद रफ़ी साहब दी आवाज़ दे विच एंजॉय करदे आं कान में झुमका।

पछताने, ओ जाने जरा नजरें मिला ले समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग।

वो माथे पर सजाकर सुर्ख बिंदिया जब भी आती है, वो माथे पर सजाकर सुर्ख बिंदिया जब भी आती है, बिना बोले ही आंखों से सौ बातें सुनाती है। जी दोस्तों, उसी बहुत सारे गहने का जिक्र कर चुके हैं, पर बिंदिया का भी अहम स्थान है गीतों के विच। गल करिए 60, 70, 80 के गीतों की, तो बिंदिया का जिक्र अक्सर ही गीतों के विच हुंदा सी, क्योंकि शिंगार नू चार चन्न लगान दे विच बिंदी का अहम योगदान हुंदा है, अहम रोल हुंदा है। तो अगला गीत भी सुन रहे हैं बिंदिया ते, लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ के।

लफ्ज़ों की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है महफिल में, लफ्ज़ों की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है महफिल में, उनकी आँखों का कजरा ही दास्ताने दिल सुना देता है। जी दोस्तों, गल करिए 60s, 70s, 80s दे विच गीतां दे विच गहनियां दा जिक्र हुंदा सी, ते उस दौरान कजरा भी पिछे नहीं सी। कजरा किसी गहने तो घट नहीं हुंदा जदों खूबसूरती नूं चार चैन लगाउण दी गल होवे तां। कजरे का भी अहम रोल होंदा जदों अखां नूं निशीलियां दिखाना होवे, अखां दे राहीं जदों अपने भाव व्यक्त करने हो तां कजरे का अहम रोल होंदा। की कह रहे ने अगले गीत दे विच, आओ सुनदे आं आशा भोंसले जी की आवाज़ दे विच।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलेडीज। तो मिड डे मेलेडीज दे विच अज असी गल कर रहे हैं उन्हां गीतां दी, जिक्र कर रहे हैं उन्हां गीतां दा जिदे विच गहिणियां दा अक्सर जिक्र हुंदा सी। दोस्तों कदे कदे सोचीदा है कि पुराने दौर दे जो गीतकार सन, पुराने दौर दे लिखारी सन, उन्हां कोल जज्बातां नूं बयान करन लई किन्ने नाजुक तराजू हुंदे सन। अज दे दौर दी गल करिए तां प्यार दा इजहार करना होवे तां सिद्धा सिद्धा ही कह दिता जांदा है। पर इक ओह वी जमाना सी जदों दिल दी गल कहण लई कलाइयां विच खणकदियां चूड़ियां दा सहारा लिया जांदा सी, झुमके दा सहारा लिया जांदा सी, बिंदिया दा सहारा लिया जांदा सी। सो की कह रहा है अगला गीत, आओ सुनदे हां लता मंगेशकर ते किशोर कुमार जी दी आवाज़ दे विच।

सूचना प्रणाली लागू की है ते सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विच श्री राम जन्मभूमि मंदिर दे दान विच कथित वित्तीय बेनियमियां दी अदालती निगरानी हेठ जांच की मांग करने वाली जनहित पटीशन ते तुरंत सुनवाई करन तों इनकार कर दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अफरीकी देश सेसल्स ते अपने दौरे के तीजे दिन विक्टोरिया के नव शक्ति विनयनगर मंदिर का दौरा किया ते पूजा अर्चना की। उन्होंने उत्थे भारतीय प्रवासियों नाल भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क विखे महात्मा गांधी के बुत ते फुलां नाल श्रद्धांजलि भी भेंट की। श्री मोदी सेशल्स के तीन दिन सफल दौरे तो बाद भारत लई रवाना हो गए ने। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की आज़ादी की 50वीं वरेगंढ मौके सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। श्री मोदी ने विशेष मेहमान वजों समागमों में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने वातावरण सुरक्षा ते निरंतर विकास में उन्होंने अगवाई लई सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मानित किया गया, जिस नाल वह यह सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए ने। उन्होंने सेशल्स की नैशनल

कि तू तोड़ दे वो कसम जो तूने खाई है, कभी कभी याद करने में क्या बुराई है, तुझे याद किए बिना रहा भी तो नहीं जाता, तूने दिल में जगह ऐसी बनाई है। बिल्कुल जी, कुछ लोग दिल दे विच इदां वस जांदे ने ना, वो किराएदार वांगू जिहड़े निकलदे नहीं, ओह कहिंदे हुण बस साडा इत्थे कब्जा हो गया, हुण तो इत्थे गए होर नूं वसा के दिखाना। सो कुछ उदां दे ही हालात साडे नाल सांझे कीते ने जी बलविंदर सरां जी ने शायरी दे जरिए। सो मैनूं लगदा है कि जदों कोई इन्ना सोहना इंसान साडे ज़ेहनों दिमाग दे विच जां दिल दे अंदर घर कर जांदा है, तां फिर उहदी तारीफ किवें हुंदी है। आओ सुनते हैं जी सरताज विरक की आवाज़ के।

वेलकम बैक जी। प्रोग्राम चल रहा है दिला जी शायर है, तो इस प्रोग्राम दे विच अगली शायरी साढ़े तक पहुँच चुकी है जी। भेजन वाले साढ़े दोस्त ने किरण अरोला जी, किरण अरोला जी ने ग्रीन पार्क कपूरथला तो अपनी शायरी साढ़े तक साझी की है कि दिल का दर्द बताया नहीं जाता। ओए होए, दिल का दर्द बताया नहीं जाता, गमों का दर्द सुनाया नहीं जाता, जी भर कर देख लो इस चेहरे को, बार बार कफ न हटाया नहीं जाता। ओए होए, इन्नी दर्द भरी शायरी किरण जी, की हो गया अज? जे ताडे बारिश नहीं हुई तो करवा दें, पर इन्नी दर्द भरी शायरी तो ना भेजो। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसीं शायरी भेजी, थैंक यू सो मच। अगली शायरी साढ़े तक जड़ी है जी, एक कोड के जरिए ही आई है जी। सो मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल दिमान, श्रीमती कृष्णा दिमान, दिमान फैमिली की आई है। पर गुजारिश है दोस्तों कि जदों तुसी जिस तरह का प्रोग्राम है, जिस तरह की उसकी तरतीब होंगी है, उस तरीके की ही शायरी भेजो या उन्होंने समझ के भेजो तो ज़्यादा वधिया रहिंदा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली शायरी जी साढ़े अजीज़ खास दोस्त उदय चंद्र जी की आन पहुँची है, बहुत ही अदब है सतिकार के नाल इन्हां दी शायरी नूं पढ़दे हैं जी। थैंक यू सो मच पहले सर। और लिख रहे हैं कि वो मेरे

घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, इन एहतियातों से कोई ताल्लुक मर नहीं चाहता। गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। बड़े लोगों से मिलना थोड़ा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलना थोड़ा फासला रखना, दरिया जब मिला समंदर से तो दरिया नहीं रहता। थैंक यू सो मच जी, अपनी शायरी साढ़े तक पहुँच दी करन दे लई। और अगली शायरी साढ़े तक एक शायरी है जी, साढ़े दोस्त सोनू जी ने मलेरकोटला तो क्या लिखा है जी कि बोझ अपनी मशूक दा उठाया है मैं। क्या बात है जी, मौत तक साथ नू निभाया है मैं, इश्क जो किताबा विच पढ़िया सी मैं वो एक कुड़ी नू करके विखाया है मैं, बोझ अपने प्यार दा उठाया है मैं। बिल्कुल जी, ये जिहड़ा प्यार हुंदा है ना, सो हुंदा इदां दा है कि सर हद्दां सरहद्दां तो पार हो जाता है। सो एक इदां दा ही प्यारा जिहा ट्रैक पेश करन जा रहे हैं जी तुहाडे सारे वास्ते। सो दोस्तों, इस ट्रैक दे नाल ही असीं इस प्रोग्राम नूं इत्थे ही वाइंड अप करांगे जी, तुहाडे तों इजाजत चाहांगे, क्योंकि ठीक 2:30 ते तुसीं सुनोगे साडा NCERT दा स्पोंसर प्रोग्राम उमंग, ते उस तों बाद ठीक 3 होएगा जी प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर साडे रेनबो दे दिल्ली केंद्र तों, ते ठीक 4 जुड़ जाओगे तुसीं रेनबो दे जलंधर केंद्र नाल ते सुनोगे प्रोग्राम हैलो जलंधर।

0: वाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने लिखते हैं,
1: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का, लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
1: जी।
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
1: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने, वो लिखते हैं,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, बड़ा खूबसूरत लिखा है,
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक और समकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
1: जी।
0: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी
0: जी। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम

0: था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहाँ चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से
0: है?
1: कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं
0: है?
1: कोई बहाना बना देंगे ठीक।
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: क्या घुल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ।
2: हाँ?
1: अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
2: अब
1: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है।
0: तो
1: अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।
0: अच्छा।

0: चुबा चुबा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो।

0: नहीं तू माँ, माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अम्मा और वो रोने लगा।
1: चुम्मा
0: अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: चुम्मा चुम्मा
2: सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा बेटा सोचा सोचा।

0: बेटे सो जा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सो जा, सो जा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ। यहाँ है, सो जा बेटे, सो जा, सो जा। शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सो जा, सो गया। इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा, जा, सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।

0: गहना गरिया लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी मैं तो साड़ी लूंगी।
1: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
1: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
1: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
1: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं।
2: ये देखो, ये पेड़
1: देख लो।
3: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
1: चलो, इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा आई,
1: क्या हुआ चुप्पा?
3: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
1: अरे दिखा दो।
3: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है ठीक है, नहीं काटेंगे। हाँ।

0: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार, ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: और नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे, इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो, हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने, तो कितना नुकसान हो जाए?
2: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है? ना फूल ना फल।
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
2: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया, वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है? चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना? तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: तू समझ गई है?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
1: बता?
2: रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।

0: ने कहा,
1: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और फिलहाल समय हो गया है 2:59 और 3 बजने को हैं। इसी के साथ ये समय होता है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का, जिसमें आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है और उनके बारे में आप जान सकते हैं सीधे एक्सपर्ट से। तो फिलहाल बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस खास विषय पर आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता, एलर्जी स्पेशलिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद पूजा जी।
1: हमारे इस खास कार्यक्रम में अगर इस विषय से जुड़े आपके पास हैं कोई सवाल तो आप हमें करिए कॉल। इस लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1082। श्रोताओं, आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, आज हम आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे एलर्जी है, और आज ये इतनी आम क्यों हो गई है, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है।
2: धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एलर्जी क्या चीज़ है ये हमें समझना है। जब भी कभी कोई भी चीज़

0: के संपर्क में हमारा शरीर आता है, चाहे वो कोई कीटाणु है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, या बाहरी कोई कण है, तो ऐसे शरीर में, ऐसे स्वरूप में हमारे शरीर से कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस अक्सर हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारे को बचाता है वो करता है। अगर ये इम्यून सिस्टम बाहरी चीज़ को पसंद नहीं करता, उसको समझ नहीं आता, तो वो उसके खिलाफ रिएक्शन करता है। अगर वो इन्फेक्शन है तो उसके खिलाफ इन्फेक्शन के रिएक्शन करता है। अगर वो साधारण कण है जैसे धूल मिट्टी के कण हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये शरीर एलर्जी के कुछ लक्षण प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एलर्जी जो है वो साधारण चीज़ें, जिन चीज़ों को नॉर्मल व्यक्ति को रिएक्शन नहीं करना चाहिए, उसको भी इम्यून सिस्टम गलत समझ के उसके खिलाफ रिएक्शन करता है, अधिक प्रतिक्रिया करता है, और जिसकी वजह से एलर्जी होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें कि एलर्जी के कारण और प्रकार क्या है, और कोई कब और कैसे उसको पता चले कि वो एलर्जी का शिकार हो गया है।
0: जी जी, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एलर्जी जो है वो एक कई सारे लक्षणों के साथ में प्रेजेंट कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आँखों की एलर्जी के अंदर, जिसके अंदर आँख के अंदर खुजली होना, लालीपन होना, पानी आना, नाक की एलर्जी जिसमें आपने अक्सर कहते सुना होगा लोगों को कि छींकें आती हैं, ज़्यादातर मॉर्निंग के अंदर आती हैं, उसके बाद में फिर नाक बहना, नाक बंद होना, कई बार कुछ लोग मुँह खोल के सोते हैं, खराटा लेते हैं, तो ये सभी चीज़ें एलर्जी की संभावनाएँ हैं। इससे कई बार नींद भी प्रभावित होती है, रात को नींद नहीं आ पाती है, दिन के अंदर कई बार स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस के अंदर नींद जो है वो आती है, तो ये सभी एलर्जी के लक्षणों की वजह से उनके प्रभाव हैं। फिर सांस फूलना, जिसके अंदर काफ़ी लोग इनहेलर, नेबुलाइजर की दवाइयाँ यूज़ करना, आपने अक्सर देखा होगा दिवाली के समय पे पॉल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और दिल्ली के अंदर तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि पॉल्यूशन, मतलब पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक पॉल्यूशन काउंट किया जाता है दिल्ली के अंदर, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो एलर्जी के लक्षणों को बढ़ा देता है। इसी के अलावा खाने पीने की चीज़ें, बच्चों में कुछ अलग कारण होते हैं खाने पीने की चीज़ों के जो एलर्जी के रूप में प्रेजेंट कर सकती हैं। कभी कभी पेट की समस्याएं, कभी कभी चमड़ी की समस्याएं, जैसे उभरे हुए छत के आ जाना और फफोले से, या कभी कभी एक्जिमा की तकलीफें हो जाना, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये एलर्जी कर सकती
1: अंदर आती है। डॉक्टर साहब, इस खास विषय पर हम आपसे विस्तार में जानकारी लेंगे, उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं। और श्रोताओं, आपको बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल है आवश्यक। और इस खास विषय पर आपके भी हैं अगर कोई सवाल, तो आप करिए ना हमें कॉल, उसके लिए हमारे नंबर है 01123421080 और 01123421082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 9868107070।

0: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस खास विषय पर आज हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, कई लोग किसी खास तरह की सुगंध या किसी चीज के संपर्क में आने से ना छींकना शुरू कर देते हैं। क्या एलर्जी सिर्फ छींक आने या नाक बहने तक सीमित है, या ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है?
1: सो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें एक्चुअली दो प्रश्न छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ ये नाक को प्रभावित करती है? तो हम कहते हैं कि एलर्जी की एक बीमारी जो है पूरे शरीर को, और सिर्फ पूरे शरीर को नहीं, ये पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कैसे? कि जो लक्षण है वो लक्षण जो है एलर्जी के किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। वो नाक में भी आ सकते हैं, आँखों में भी आ सकते हैं, कई बार कान में बार बार दर्द होना, कान बहना, वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को कई बार कहा जाता है कि टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, तो वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है। बच्चों को नेबुलाइजर इनहेलर की जरूरत पड़ना, छाती से सीटी जैसी सी आवाजें आना, ये सब भी छाती की एलर्जी की वजह से हो सकता है। शरीर पे दाने चकते होना, खुजली होना, और कभी कभी एलर्जी जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आपके प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न जो है वो ये कि ये जो स्मेल है, ये स्मेल जो है इससे जैसे परफ्यूम हो गया या ये चीज़ें हो गई जो स्मेल की चीज़ें, स्ट्रॉन्ग स्मेल की चीज़ें हैं, अक्सर ये एलर्जी करती नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है उन लोगों की समस्याओं को बढ़ा देती है। तो ये ट्रिगर्स हैं, बट ये खुद अपने आप में एलर्जी नहीं करती है।
0: तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को किसी तरह की स्मेल से एलर्जी है तो उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है?
1: बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब भी कभी कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, डेली बेसिस पे छींकें आ रही है, आपको बार बार दवा लेने की जरूरत पड़ रही है, आपका काम प्रभावित हो रहा है, नींद प्रभावित हो रही है, आपको उसके लिए चिंता करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये सही समय है कि जिसके अंदर एक एलर्जी के एक्सपर्ट को आपको जरूर मिलना चाहिए और जरूर दिखाना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, ले लेते हैं इनको कॉल। हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: हाँ, पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। मेरे तीन सवाल हैं।
0: जी,
2: पहला सवाल, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी जी।
2: तो मेरी उम्र 48 वर्ष है और व्हाइट मेरी स्किन से टोनर्स होते हैं, ऐसे मेरी स्किन है।
0: जी जी।
2: तो मेरा सवाल है कि मुझे ना श्वसन एलर्जी है। अब जो भी खुशबू या महक से मुतालिक चीजें हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बदबू या स्मेल से मुतालिक चीजें हैं उससे मुझे मतलब एक दिमाग में भी वो प्रॉब्लम चल जाती है और पेट में भी, और सांस लेने में जो है वो दम सा घुटता है
0: जी।
2: और कुछ हद तक मुझे स्किन एलर्जी भी है, तो इसके लिए मैं घरेलू स्तर पर मैं क्या करूँ, या अगर आपके पास आते हैं तो वहाँ मतलब मेडिसिन से इलाज हो जाएगा कि मतलब खून खराब है, तोड़ फोड़ मारधाड़ की नौबत आएगी? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल कि मेरी माता जी को वो चर्म स्किन से मुतालिक एलर्जी है, उनकी उम्र 73 वर्ष।

0: वो क्या करें घरेलू स्तर पर, और अगर आपके पास आया तो आप क्या करें। तीसरा, मेरी सिस्टर है, उनकी उम्र 47 साल है और उनको जो है नाक से मुतालिक एलर्जी है। तो ये 3 सवाल है, इनका जवाब दें बड़ी मेहरबानी होगी।
1: जी जी डॉक्टर
2: साहब, तो धन्यवाद आपके प्रश्न का। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपके तीनों प्रश्न एक दूसरे के साथ संबंधित ही हैं, और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि तीनों जो सदस्य घर के हैं जो ब्लड रिलेटेड हैं, तो ये ब्लड रिलेटेड तीनों सदस्यों को एलर्जी की समस्या है। और जो सांस की नली से संबंधित, तो सांस की नली हमारी नाक से शुरू होती है और फेफड़ों तक जाती है, तो जिसको हम रेस्पिरेटरी एलर्जी कहते हैं। और आपको अगर देखा जाए तो किसी एक सदस्य को नाक के लक्षण ज़्यादा हैं, किसी दूसरे सदस्य को शायद सांस के लक्षण ज़्यादा हैं, पर ये एक कॉमन एलर्जी ही है। अब ये हमें समझना है कि दो तरीके के कण जो है वो मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। एक तरीके का कण है जिसे वाकई में एलर्जी होती है, जैसे फूलों के परागकण हुए, या जैसे मौसम बदलाव के साथ में अलग अलग तरीके के परागकण आते हैं, कभी कभी कुछ तरीके के डस्ट माइट, कॉकरोच, पेट डेंडर्स, घर के अंदर पालतू जानवर, इनके जो डेंडर्स होते हैं, उन सभी चीजों से जो एलर्जी हो सकती है वो ट्रू एलर्जी है। लेकिन जिस व्यक्ति को एलर्जी की शिकायत है, ऐसी स्थिति में उनकी जो नाक की त्वचा है अंदर से, या सांस लेने की जो त्वचा है अंदर से, वो अधिक सेंसिटिव हो जाती है, अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाकी चीज़ों को भी रिएक्ट करती है, जैसे कोई स्मेल आ गई तो उसको भी रिएक्ट करती है। लेकिन एक्चुअल में वाकई उसे एलर्जी नहीं होती, पर क्योंकि त्वचा पहले से ही संवेदनशील है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन करती है और आपको लक्षण आते हैं। रही बात बचाव की, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, एक विशेषज्ञ से मिलके उनकी सलाह के साथ में ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके और उनको दूर करने की कोशिश करना है कि किस तरीके से उसका बचाव किया जा सके। और कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिन ट्रिगर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक दवाइयां जिनको भी दिया जा सकता है और उसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही सांस की नली में और नाक के अंदर जो संवेदनशीलता है उसको थोड़ा कम करने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं, जिससे बार बार वो रिएक्शंस ना हो। ओवरऑल जो आपको चीजें तकलीफ करती हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती हैं, उसको बेहतर किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्मेल से होने वाले एलर्जी की, तो बहुत से लोग एलर्जी और सामान्य सर्दी जुकाम में अंतर कभी कभी नहीं कर पाते। आम व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि उसे एलर्जी है या सिर्फ वायरल संक्रमण?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर देखें तो जैसे आपने नाम लिया वायरल संक्रमण, वायरल संक्रमण जो है वो एक तरीके का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें या वायरस जो है वो ज्यादातर बुखार के साथ आपको मिलेगा। एक बार जब भी कभी आएगा तो बुखार आएगा, बुखार के साथ में 5 से 7 दिन की वो प्रतिक्रिया रहेगी, जिसके अंदर शुरू के 3-4 दिन के लिए बुखार रहेगा, नाक बहेगी, और अक्सर जो है वो छींके मतलब लगातार आना, लगातार नाक से पानी बहना, और ये चीज़ें अचानक शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद वो दवाओं को 1 दिन 2 दिन के अंदर 3 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगी। एक और बड़ा अच्छा मिलेगा आपको वायरल के अंदर कि एक से अधिक लोगों को एक ही समय के आसपास में वायरल घर के अंदर मिलेगा। तो आप हमेशा पूछ सकते हैं घर के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को भी कुछ सर्दी जुकाम चल रहा है क्या, तो उसकी वजह से शायद ये वायरल ज़्यादा है। लेकिन अगर ये सिंपल एलर्जी है तो उसमें बुखार नहीं आएगा, बदन दर्द नहीं होगा, शरीर में थकावट नहीं होगी, लेकिन सुबह उठते के साथ ही अर्ली मॉर्निंग छींकें आएंगी, सर्द गर्द के गर्म के समय के ऊपर भी छींकें वगैरह ज़्यादा परेशान करेंगी, नाक ब्लॉक करेगी, तो इसका मतलब हम एलर्जी की वजह से ज़्यादा परेशान।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो,
3: नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं टीना बात कर रही हूँ दिल्ली से।
1: जी
3: मेरे 2 सवाल हैं डॉक्टर सर से। डॉक्टर सर को नमस्कार पहले, और एंकर मैम को भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: जी पूछिए सवाल।
3: सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जैसे ना सर मुझे ना बहुत ज्यादा धूल मिट्टी से एलर्जी है, मतलब आप ये समझिए कि जैसे जरा सी हवा चलती है और मिट्टी उड़ने लग जाए तो मुझे एकदम से सांस घुटने लग जाता है और एकदम से बेचैनी होना शुरू हो जाती है। या जैसे मैं बाहर कहीं ट्रैवल करती हूँ तो भी अगर जैसे धूल मिट्टी उड़ रही है या ज्यादा क्या नाम है धूप की वजह से भी मुझे कई बार एलर्जी, मतलब सांस घुटने की जो है वो प्रॉब्लम है। तो और जैसे घर में हम धूप अगरबत्ती ये सब भी नहीं जला सकते, तो ये मतलब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने अस्थमा का वो किया, क्या नाम है, जांच की, वो नॉर्मल निकला है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इमरजेंसी एकदम ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर जहाँ पे मेरा कोई फैमिली का पर्सन मेरे साथ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मैं कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? कोई क्या ऐसी मेडिसिन है जिसे खा के थोड़ी राहत मिल सकती है? और इससे
1: लगता है
2: तो आपका प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो आपको जो समस्या है उसके अंदर दमे की समस्या अधिक है जो आप बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत नाक से होती है, नज़ले जुकाम से होती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ तरीके के इलाज हमारे लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले, हाँ ये संभव है कि किसी व्यक्ति को दमे की शिकायत हो लेकिन उनका टेस्ट नॉर्मल आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ अलग भांति के अलग तरीके के टेस्ट, जैसे आजकल हमारे पास में कुछ अति संवेदनशील टेस्ट जिसको ऑसिलोमेट्री बोलते हैं, जो

0: बहुत जरा से जरा सी चीज़ को भी पकड़ पाते हैं और उसके बाद में उसको बता पाते हैं कि क्या सांस की नली में थोड़ी बहुत भी सूजन है कि नहीं है, तो वो करके, और अगर हमें पता चल पाए कि थोड़ी सूजन भी है तो आपको कुछ दवाइयाँ शुरू की जाती हैं जिन दवाइयों के माध्यम से हम आपकी जो सांस की नली और नाक की जो संवेदनशीलता है उसको कम
1: जी
0: कर पाते हैं।
1: जी
0: फिर उसके बाद आपका प्रश्न है कि कभी अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कभी कोई तकलीफ आ गई तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो उसके लिए कुछ रेस्क्यू मेडिसिन दी जाती हैं। अक्सर ये मेडिसिन जो होती हैं ये आपको नाक के माध्यम से या सांस के माध्यम से लेने की होती हैं, ये खाने पीने की नहीं होती हैं। रेस्क्यू मेडिसिन जो हैं जिस समय के ऊपर अधिक तकलीफ है तब कोशिश की जाती है कि खाने पीने की दवा के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, या तो इन्हेलर या नेबुलाइजर की दवाइयाँ या नाक का स्प्रे, और या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर्स कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, पर खाने पीने की टेबलेट सिरप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते।
1: नहीं, डॉक्टर साहब एक और कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल भी। हेलो हेलो,
2: नमस्कार जी। सर
1: नमस्कार।
2: को भी नमस्कार जी।
0: नमस्ते भैया।
2: मैं यामिन भाई रेडियो वाला चिरूडी लॉन्ज जिला का
1: जी
2: जी, मैं सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मौसम बदलता है तो
1: जी
2: उसमें लोगों को दिक्कत होती है, सर्दी से गर्मी में जाएंगे, गर्मी से
1: जी
2: बरसात में आएंगे तो दिक्कत होती है, तो ये भी एक एलर्जी होती है, और क्या ये माँ बाप से बच्चों में भी जाती है, कहीं जाना चाहिए।
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जेनेटिक होती है, अनुवांशिक होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स में, माँ बाप के अंदर, या इवन माँ बाप में भी नहीं, कभी दादा दादी या नाना नानी के अंदर भी अगर एलर्जी के किसी तरीके के लक्षण रहे हैं तो बच्चों में या पोते पोती नाती पोतों के अंदर भी काफ़ी हद तक उनमें एलर्जी होने के लक्षण हो सकते हैं। और जैसे आपने बताया मौसम के बदलाव के साथ लक्षण होते हैं जिसको हम सीजनल एलर्जी बोलते हैं, ये ज़्यादातर परागकणों की वजह से, क्योंकि अलग अलग मौसम के अंदर अलग अलग पेड़ पौधे जो हैं वो खिलते हैं, उन पर फूल आते हैं, उनके परागकण आते हैं, और ये परागकण जब संपर्क आते हैं स्पेशली संवेदनशील त्वचा के साथ, संवेदनशील नाक या सांस के साथ, सांस की नली के साथ, तब उस समय पर वो लक्षण करते हैं। तो यस, इसके लिए जानकार टेस्टिंग करानी बहुत जरूरी है, और उसके बाद में फिर उसका यथासंभव उपाय जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को गले में खराश होती है, तो क्या ये भी एक किसी एक तरह की एलर्जी का सिम्टम है?
0: जो गले में खराश है वो ज़्यादातर किसी एलर्जी की वजह से हो सकती है, लेकिन उसके अलग कारण भी हो सकते हैं। जो कॉमन कारण है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे किसी को नज़ला जुकाम है तो नाक आगे बहती है, लेकिन कई बार नाक बंद होती है, बहती नहीं है, लेकिन वो नाक पीछे गिरती है गले के अंदर। गले के अंदर गिरने की वजह से वो गले के अंदर एक तरीके की सूजन कर देती है जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में कोबल स्टोनिंग बोलते हैं। ये जो सूजन है इसकी वजह से गले की जो पिछली सतह है, जो त्वचा है, वो लाल हो जाती है और वहाँ पे खुजली होने लगती है, कभी कभी तालू में भी खुजली होने लगती है, आपने महसूस किया होगा, और ये सभी चीजें एलर्जी के लक्षण हैं। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि लोग उसकी वजह से मुंह खोल के सांस लेते हैं, जो हवा जो है, जो पॉल्यूटेड एयर है, जो इन्फेक्टेड एयर है, वो उस कोबल स्टोन अपीयरेंस के साथ जाके चिपक जाती है और फिर वहां पर इन्फेक्शन करती है, तो गला खराब होना, एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ना, फीवर आना, वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी अलग कारण, जैसे किसी को एसिडिटी, एसिडिटी काफी कॉमन चीज है, और रिफ्लक्स की वजह से जो ये तेजाब है पेट से, ये रिफ्लक्स होकर गले के अंदर जाता है और वहां पे भी ये खराश का कारण बन सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, ले लेते हैं इनका कॉल
0: जी।
1: भी। हेलो
3: हेलो
1: जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: हाँ जी
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
3: मेरा पूछना ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि अगर पीएफटी नॉर्मल किसी का आ जाए तो उसको अस्थमा हो सकता है
0: जी,
3: अगर किसी को पीएफटी नॉर्मल आ जाए उसको फिर भी सिम्टम हो तो
0: जी
3: उसको कौन सी जांच करानी चाहिए?
0: बिल्कुल, तो उसके लिए जो जांच है उसका नाम है ऑसिलोमेट्री। ऑसिलोमेट्री के नाम से ये टेस्ट होता है जो पीएफटी के मुकाबले अधिक सेंसिटिव, अधिक संवेदनशील होता है, कुछ कुछ जगहों पर पाया जाता है, लेकिन हाँ ये बारीक से बारीक सूजन को भी सांस की नली में पकड़ पाता है। जो स्पायरोमेट्री का जो टेस्ट है, जो पीएफटी का टेस्ट है, वो कभी कभी बारीक सूजन को पकड़ नहीं पाता, लेकिन जो ऑसिलोमेट्री का टेस्ट है वो उसको बारीक सूजन को भी पकड़ सकता है।
1: जी उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ सबसे अधिक एलर्जी किन वजहों से होती है? क्या धूल प्रदूषण, परागकण और कुछ खाद्य पदार्थ इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं?
0: जी, तो हमें ये समझना है कि एलर्जी को अगर मोटे तौर पे माने तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो किसी खाने पीने की वजह से होती है, एक है जो सांस लेने की वजह से होती है। अगर खाने पीने के अंदर बात करें तो सबसे अधिक जो मुख्य कारण है वो जैसे छोटे बच्चों के अंदर स्पेशली दूध, दूध के बाद में जो अगला कारण है वो अंडा, फिर मूंगफली, कभी कभी किसी कुछ लोगों को गेहूं की एलर्जी भी होती है, और फिर उसके बाद में जो लोग नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, सी फूड खाते हैं, तो उनसे भी कभी कभी एलर्जी हो सकती है। तो ये कॉमन कारण है खाने पीने की एलर्जी के। लेकिन हमने देखा कि भारतवर्ष के अंदर कुछ नए तरीके के कारण जो शायद विदेशों में नहीं मिलते, जैसे ब्रिंजल, बैंगन की एलर्जी होना, भिंडी की एलर्जी होना, तो ये भी हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि पाए जाते हैं।
1: सर किसी प्रमुख सब्जी, और जैसे आपने सी फूड के बारे में कहा, तो इससे

0: एलर्जी होने का कारण क्या होता है?
1: देखिए, एलर्जी जो है वो किसी भी फूड के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है उससे होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया है,
0: जी
1: तो ये हमारा इम्यून सिस्टम किसी को भी पसंद और नापसंद कर सकता है। तो जो ये पसंद और नापसंद करना है, ये हर एक के इम्यून सिस्टम का अपना खुद का रोल है जिसको कि कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ज़्यादातर जेनेटिक कंडीशंस में जो अनुवांशिक कंडीशन है उसके अंदर ये पोटेंशिएट हो जाता है,
0: जी
1: लेकिन ये इम्यून सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या पसंद करना है और क्या नहीं पसंद करना है। अभी जैसे आपको मैं बताऊं कि एलर्जी जो है, अगर आप देखेंगे तो जो लोग शहरों में ज़्यादा रहते हैं, जो लोग साफ स्वच्छ वातावरण में ज़्यादा रहते हैं, साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कहीं अधिक पाई जाएगी। जबकि उसी के मुकाबले अगर आप देखेंगे गाँव के माहौल के अंदर, जहाँ पे के लोग मिट्टी के साथ में पल बढ़ रहे हैं, वहाँ पर एलर्जी की समस्या कम होती है।
0: ऐसा क्यों है
1: तो
0: सर?
1: जैसे जैसे हमारा वेस्टर्नाइजेशन, हम एक नवीनीकरण की तरफ बढ़ते जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं, नेचुरल चीज़ों से दूर होते जाते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बढ़ते जाते हैं,
0: जी
1: वैसे वैसे हमारा शरीर जो है उन नेचुरल चीज़ों को भूलता जाता है। और
0: जी
1: फिर वही नेचुरल चीज़ें जब हमारे संपर्क में आती हैं बाद में, 2 साल बाद 3 साल बाद, तो हमारे शरीर को समझ नहीं आता कि इनको कैसे रिएक्ट करना है, और ऐसी स्थिति में वो अननेचुरल प्रतिक्रिया करता है जिसको हम एलर्जी कहते हैं।
0: जी
1: इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे थे फूड एलर्जी की, उसी के साथ में रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस लेने की एलर्जी। अब इसके घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर अलग कारण है, 4 दीवारी के बाहर अलग कारण है। 4 दीवारी के अंदर जो कारण है वो अक्सर बोलते हैं डस्ट माइट। डस्ट माइट जो है, इसके अंदर ये एक छोटा कीड़ा होता है जो हमारे बिस्तर में, चादर में, सोफे में, गद्दों में पाया जाता है। ये बहुत महीन कीड़ा है जो हम आंख से नहीं देख सकते, और ये कीड़ा कुछ केमिकल बनाता है। ये केमिकल जो होते हैं जब रात को जब हम सोने के लिए गए, और ये केमिकल जो है नाक के जरिए अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा रात को 12 बजे 1 बजे इनहेलर की जरूरत पड़ना, नेबलाइजर की जरूरत पड़ना, घुटन होना छाती के
0: हाँ
1: अंदर,
0: एकदम से।
1: सुबह सुबह
0: हाँ
1: उठते के
0: जी
1: साथ ही उनको छींके आना। कुछ लोगों को लगता है मुझे टूथपेस्ट एलर्जी है, कुछ लोगों को
0: हाँ
1: लगता है मुझे साबुन से एलर्जी है, पर एक्चुअल में ये डस्ट माइट की एलर्जी होती है, और ये डस्ट माइट के जो कण हैं ये इनको परेशान करते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है इंडोर में वो है कॉकरोच। आजकल हम सभी लोग कहते हैं कि कॉकरोच जो है वो हमारे घर में है नहीं, लेकिन कॉकरोच एक्चुअली सभी के घर में है। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड होने की वजह से हमें दिखते नहीं, और ये कॉकरोच के जो जो कण हैं वो काफ़ी दूरी तक, 70 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर दूरी तक भी क्रॉस कर सकते हैं हवा में। तो ये कॉमन कारण है।
0: और ये
1: फिर
0: क्या परेशानी पैदा करते हैं सर
1: ये
0: फिर?
1: वन सेकेंड फिर से नाक के अंदर जाएंगे तो नाक के अंदर से नज़ले की दिक्कत करेंगे, सांस के अंदर जाएंगे तो सांस के अंदर दिक्कत करेंगे। और ये माना जाता है कि एस्थमा, दमा के मरीजों में जिनको कॉकरोच की एलर्जी है, वो काफ़ी हानिकारक मानी जाती है, और माना जाता है कि वो काफ़ी लंबे समय तक परेशान रहेंगे, वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं।
0: जी
1: इसी तरीके से फंगस, कभी कभी हम घरों के अंदर पेड़ पौधे लगा लेते हैं, दीवारों में सीलन आती है, तो ये फंगस जो है ये भी
0: हाँ
1: परेशान करती
0: हाँ
1: है।
0: ये एक मुख्य
1: जी,
0: कारण होता है। जी
1: और सबसे
0: बिल्कुल
1: इंपॉर्टेंट जो हमारे कल आजकल देखने आ रहा है, पेट्स, कुत्ते और जो कैट्स और जो डॉग्स और जी ये जो घर के अंदर रखते हैं, ये चीज़ें।
0: सर, इस पर मैं आपसे
1: जी
0: विस्तार में बात
1: जी
0: करूंगी। उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो
2: हेलो मैडम,
0: जी
2: मेरी आंखें लाल रहती हैं।
0: जी जी आप अपना
2: वो
0: नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैडम, मेरा नाम रोशन सिंह है।
0: जी
2: मैं वैसे रहने वाला तो उत्तराखंड काशीपुर का हूँ,
0: जी
2: लेकिन दिल्ली में हूँ इस समय।
0: ओके
2: तो
0: हाँ
2: मेरी आंखें काफी लाल रहती हैं, ऐसी रहती है जैसे कोई नशा कर रखा है, जबकि नशा कोई नहीं किया है। पानी, अगर सवेरे उठता हूँ, पानी से नहाता हूँ, मैं साबुन भी नहीं लगाता तो भी मेरी आंखें लाल हो जाती हैं,
0: जी
2: और मुंह धोता हूँ तो भी आंखें लाल हो जाती हैं, काफी लाल हो जाती हैं। डॉक्टर को दिखाया था, तकरीबन 15-20 साल से लगातार लाल है।
0: जी
2: डॉक्टर को बहुत दिखाया तो डॉक्टर ने आंखें चेक करके ये बताया कि इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है, मुझे कोई जलन या खुजली सरे नहीं, लेकिन देखने वाला सामने कहता लाल है। लेकिन वो डॉक्टर कह रहे तो जो कोई परेशानी नहीं तो फिर मत इलाज करा, लेकिन देखने वाला परेशान हो जाता है। मैं गुरुद्वारे में हूँ इस समय, तो
0: जी जी जी
2: लेकिन यही कहते हैं कि तुम लोग कोई नशा करके आया है या कुछ है
0: जी
2: ऐसा।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: तो
0: इनके
1: जो आंखों का
0: सवाल
1: लालपना
0: जी।
1: है, जो आंखों का लालपना है जैसे आपने बताया,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: ज़्यादातर आंखों की जो एलर्जी है वो खुजली के साथ आती है, और खुजली के साथ में लालीपना होना, खुजली के साथ में आंखों से पानी चलना। तो लेकिन अगर आपने जैसे बताया कि सर लालीपना है लेकिन खुजली नहीं है,
2: हाँ
1: तो
2: खुजली
1: ऐसी
2: नहीं
1: स्थिति में
2: लेकिन
1: एलर्जी के चांसेस कम हैं, क्योंकि एलर्जी के लक्षण ज़्यादातर खुजली के साथ में आएंगे, बिना खुजली के चांसेस काफ़ी कम है।
0: जी उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस खास विषय पर हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता। इस विषय से जुड़े सवाल अगर आपके पास भी हैं, आप हमें कॉल करिए ना। उसके लिए हमारे पास नंबर है 01123421080 और 2342102। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस विषय पर हमें बेहद इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर साहब आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है, कॉल लाइन में ले लेते हैं इनको।
2: जी,
1: कॉल
2: जी।
1: हेलो
3: हेलो, यस मैम, गुड आफ्टरनून।
1: जी जी, नमस्कार।
3: मैम मैं ऋषभ बोल रहा हूँ कटिहार बिहार से।
1: जी
3: मैम, अभी जितनी सारी एलर्जी को लेके बात हो रही है ना, वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीज मेरे लिए है, तो मैं अपना स्पेसिफिकली बताता हूँ।
1: जी
3: जैसे है ना कि जैसे मैं सोया हुआ हूँ, उठा, फैन ऑन है, मैं सो के उठा, और जैसे उठा तो फिर जो हवा लगती है ना ठीक होने लगती है, फिर अगर तुरंत मैं पानी पी लिया तो उससे होने लगती है, या फिर जैसे अभी मौसम खराब है, हवा चलने लगी, धूल उड़ गया तो थोड़ा सा उससे हो जाएगा, कहीं पे गंदा जमा हुआ है उसको अगर थोड़ा साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया तो उससे होने लगती है। तो कुछ कुछ ऐसे सही सिम्टम्स हैं।
1: जी जी।
3: जैसे अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ थोड़ी ज्यादा गर्मी है, अगर थोड़ा सा घर गांव की तरफ चला गया तो वहाँ सुबह की हवा

0: लगती है उससे हो जाती है, और छींक आती है नाक से पानी जाता है, कुछ इस तरह।
1: इन सभी सवालों के जवाब डॉक्टर साहब आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी
2: जैसे हमने आपको बताया, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, जैसे हमने आपको बताया कि क्योंकि आपकी नाक की जो त्वचा है वो अंदर से काफ़ी संवेदनशील हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, जिसकी वजह से जो भी मौसम में बदलाव होते हैं, हवा, धूल के कण, ये सभी आपको परेशान करते हैं। मैं एक बहुत सरल से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। हम सभी लोग जैसे जब महिलाएँ घर में खाना बनाती हैं और वो हाथ से नमक मिर्च कोई भी चीज़ डालती हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर हाथ में छोटा कट लग जाए और अब वो नमक को हाथ लगाएं तो नमक जलाएगा, तो नमक नहीं जला रहा है, नमक तो पहले भी नहीं जला रहा था, वो कट है जिसकी वजह से अब नमक त्वचा के संपर्क में आया तो जलन महसूस हुई। इसी तरीके से अगर नाक आपका ठीक है, संवेदनशील नहीं है, तो यही चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन अगर नाक को एलर्जी है और नाक आपका संवेदनशील है तो यही चीज़ें आपको महसूस करेंगी और जलाएंगी। तो उसके लिए मैं यही राय दूंगा आपको कि एक बार एक आप निकट के किसी एलर्जी विशेषज्ञ से मिलकर अपनी जाँच कराएं, वो आपको जरूर मदद करेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, हमें वेस्ट बंगाल से सादिर लिख रहे हैं कि मेरे को बहुत तेज़ खर्राटे आते हैं और इसकी वजह से इनके परिवार वालों को भी काफ़ी दिक्कत होती है।
2: जी, तो हमें ये समझना है कि खर्राटा क्यों आता है। खर्राटा जो है वो अक्सर इस वजह से आता है कि नाक के पीछे का जो हमारा सांस लेने का रास्ता है, अगर वो रास्ता किसी कारण से थोड़ा पतला हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें खर्राटा आता है। अब ये कई कारण हो सकते हैं जिसके अंदर से, छोटे बच्चों के अंदर अक्सर ये एलर्जी होती है, नाक की एलर्जी, जिसमें पीछे के रास्ते के अंदर जो टॉन्सिल है वो टॉन्सिल बढ़ जाता है, एडेनॉइड बढ़ जाता है, वो रास्ते पर दबाव डालता है तो रास्ता पतला हो जाता है तो खर्राटा आता है। यही चीज़ें 40-45 की उम्र के बाद में जो सांस के पीछे का रास्ता है उसकी दीवारें थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। जब वो कमजोर हो जाती हैं, या मोटे लोगों के अंदर, ओबीज लोगों के अंदर, तो वो दीवारें थोड़ी कमजोर हो जाती है फैट डिपोजिशन की वजह से, तो रास्ता पतला हो जाता है, उसकी वजह से भी खर्राटे आते हैं। तो हर खर्राटा एलर्जी नहीं है, पर हाँ कुछ खराटों में एलर्जी कारण हो सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, रोहिणी से राज लिख रहे हैं कि इनकी वाइफ को नोज पर निशान है और डॉक्टर को दिखाया था लेकिन उन्होंने हर्पिस की बीमारी बताई है, निशान अभी भी है, क्या हम आपके पास आ सकते हैं और ये क्या है प्रॉब्लम?
2: तो
1: ये?
2: जो हर्पीज है, हर्पीज हमें समझना है कि हर्पीज एक वायरस का इन्फेक्शन है और वायरस का इन्फेक्शन जो है या हर्पीज जो है वो एलर्जी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में, बच्चों में या बड़ों में, कभी कभी नाक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल क्रीज होती है जिसको हम एलर्जिक सैल्यूट बोलते हैं। सैल्यूट का मतलब क्या है कि जैसे किसी को नाक बह रही है और बार बार वो हाथ से नाक को रगड़ते हुए ऊपर की तरफ पहुंचता है तो नाक पे एक हॉरिजॉन्टल क्रीज बन जाती है, एक निशान आ जाता है जो परमानेंटली नजर आता है, तो उसको वो एलर्जी की वजह से हो सकता है।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, नरेंद्र सिंह चौहान हमें उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि नागरिक ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि खासकर दिल्ली के पर्यावरण को वो शुद्ध करने में सहायक साबित हो सके।
2: ये एक बहुत अच्छी सोच है और एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये सिर्फ एलर्जी को ही नहीं, ये तो बहुत सारी चीज़ों को प्रभाव कर होगी। सबसे पहला जो हमें समझना है कि सबसे पहले खुद को बदलाव करना है, सबसे पहले खुद ये करना है कि हमें किसी किस्म का पॉल्यूशन नहीं फैलाना, ये सबसे पहले जरूरी है। फिर उसके बाद अपने आसपास के माहौल को थोड़ा बेहतर करना है और उसके बाद आगे जाना है। तो एजुकेशन, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप चारों लोगों को बताएं कि पॉल्यूशन, स्मोकिंग कितना हानिकारक है। मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, आपके घरों के अंदर अगर अगरबत्ती धूपबत्ती यूज होती है, आप आज से ही उसको बंद कर दीजिए, ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि एक अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो 75 सिगरेट के बराबर धुआं देती है, एक धूपबत्ती 130 सिगरेट के बराबर धुआं देती है। तो आप समझिए कि अगरबत्ती धूपबत्ती आप जला रहे हैं लेकिन कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन कितनी सारी सिगरेट के धुएं के बराबर तो आप ऑलरेडी अपने फेफड़ों में लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरू करें तो मुझे लगता है वहीं से ही बदलाव की शुरुआत हो जाएगी।
1: जी, मनदीप झज्जर से लिख रहे हैं कि इनकी राइट साइड की तरफ फूड पाइप में घर घर की आवाज आती है और छाती में ऐसा खाली खाली लगती है, राइट साइड में होता है ऐसा, क्या करें?
2: देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये सभी लक्षण हैं, लक्षण जो हैं जैसे सांस की नली के अंदर दबाव की वजह से, सांस की नली में बलगम की वजह से, सूजन की वजह से, तो सबसे पहले आपको एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनसे सबसे पहले ये जांचना है, कराना है, पीएफटी कराना है या ऑसिलोमेट्री कराना है और जानना है कि ये क्या सांस की नली में सूजन है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है कि अगर ये सांस की नली में सूजन है तो क्या एलर्जी है कि नहीं। अगर ये एलर्जी का लक्षण रखता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि एलर्जी की वजह से हो सकता है, फिर एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी यथासंभव जांच कराएं।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार जी,
3: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, आप सवाल पूछिए अपना।
3: मारडी जिला राजस्थान से बोल रहा हूँ, आशीराम मेरा नाम।
1: जी जी,
3: एलर्जी है।
1: आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा सा क्लियर। जी,
3: मेरे नाक में बहुत परेशानी रहती है, पानी बहता रहता है
1: जी,
3: और नाक बंद हो जाता है और पानी अंदर गले में गिरता है,

0: मुझे बहुत आती है,
1: जी
0: कुछ करता हूँ तो बहुत चलती है। एक परेशानी तो ये है, और एक जो कभी कभी जैसे कुछ खाया तो रात को 1-2 बजे सांस की बहुत परेशानी हो जाती है, और ठीक होगा
1: जी जी
2: तो धन्यवाद आपके प्रश्न का। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि जो सबसे कॉमन समस्या है वो रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस की एलर्जी है, जिसमें नाक की समस्या, सांस की समस्या जो अक्सर रात में या अर्ली मॉर्निंग के अंदर आती है, और बिल्कुल वैसे ही लक्षण आपने बताए। तो इसके लिए जो आपके आसपास बगल में अच्छे एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब से मिलके उनसे नाक की जाँच, सांस की जाँच कराएँ, उसके बाद वो आपको कुछ दवाएँ लिख के देंगे, नाक का स्प्रे, इनहेलर की कुछ दवाएँ लिख के देंगे, कुछ जाँचें करेंगे, कारण बताएंगे क्यों है, और साथ में उनके निदान को भी बताएंगे कि कैसे बचना है इस एलर्जी से।
1: जी डॉक्टर साहब, हमें सुकांता बालो जोधपुर राजस्थान से लिख रहे हैं कि इनको एक परेशानी है कि इनकी नाक पर पिंपल आ गए हैं, और जब ये सनलाइट से घर आते हैं तो इनको एलर्जी फील होती है, और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन उन्होंने कुछ क्रीम वगैरह दी जिससे इनको अभी राहत नहीं मिली, तो ये क्या करें?
2: ज़्यादातर स्थिति के अंदर जो पिंपल्स होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से या फैट की वजह से होते हैं, पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कभी गर्म से सर्द में या सर्द से गर्म में कभी जाएंगे और लक्षण अगर बढ़ जाते हैं, इसका मतलब आपकी नाक की त्वचा अंदर से संवेदनशील है। अगर वो अंदर से संवेदनशील है तो उसका कारण जानने की ज़रूरत है कि क्या ये एलर्जी है या ये एलर्जी नहीं है, तो वो जाँच करके पता चलेगा। कुछ एलर्जी के टेस्ट होते हैं जिनसे जाना जा सकता है कि क्या आप वाकई में एलर्जी से ग्रसित हैं कि नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पर ले लेते हैं पहले उनका कॉल। हेलो
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी डॉक्टर साहब, नमस्कार।
2: नमस्ते जी।
3: जी मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव खोखनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी
3: अच्छा सर, वर्ष 2002 में मैं ज्यादा बीमार हुआ था, मतलब बुखार वगैरह और भी प्रॉब्लम्स थी, तो उसके बाद मुझे मतलब बलगम रहने लगी, खांसी में लगातार बहुत खांसी उठती है, मैंने बहुत इलाज करा लिया, यहाँ कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो करनाल में है, और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में है, और बाकी और हॉस्पिटल से भी कराया है जी, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ, आराम वो आराम नहीं मिला, मतलब ईएनटी वाले को भी दिखाया यही करनाल में, और जो ये टेस्ट स्पेशलिस्ट हो, टीबी वाले डॉक्टर हो, इनको भी दिखाया जी,
2: जी।
3: तो बात यह है कि जो है ना बार बार थूकना पड़ता है, उसके खंभे टाइम के बीच में उसको थूकना पड़ता है बलगम, या कई बार अंदर निकलनी पड़ती है, तो
2: जैसे आप बता रहे हैं कि बलगम जो ऐसा लगता है जैसे आपकी सांस की नली में अधिक बनता है, और अभी हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि बलगम जो अधिक बनना है वो इन्फेक्शन में भी हो सकता है, एलर्जी में भी हो सकता है, तो जो भी आपकी जांचें हुई हैं, जो भी आपके डॉक्टर साहब देख रहे हैं, सबसे पहले वो ये बताएंगे कि ये जो बलगम जो बन रहा है अधिक, ये क्या इन्फेक्शन की वजह से कि एलर्जी की वजह से। अगर ये एलर्जी की वजह से आता है और वो डॉक्टर साहब को लगता है एलर्जी की वजह से है, तो उस स्थिति के अंदर एलर्जी की जाँचें महत्वपूर्ण रहेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको वाकई में किसी किस्म की एलर्जी हो जो काफ़ी समय से पकड़ में ना पाई हो, जिसकी वजह से आप समस्या से जूझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक एलर्जी के जानकार डॉक्टर से भी मिल लीजिए, वो बेहतर रहेगा
1: जी। डॉक्टर साहब, वीरू बख्शी हमें मेरठ से लिख रहे हैं कि इनके लेग पर कट पड़ जाते हैं और वहां पर इनको खुजली होती है, जिसके कारण ये इनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है और खुजली करने पर खून निकलता है, तो क्या इनको करना चाहिए?
2: जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये खुजली होती है, और ये इसका मतलब ये है कि त्वचा में एक लेवल की एक्जिमा की शिकायत है। एक्जिमा एक तरीके की एलर्जी होती है, पर अक्सर ज्यादातर एक्जिमा जो है वो जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन स्पेशलिस्ट कोलीग्स होते हैं, वो डॉक्टर्स जो है वो उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, पर हम उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ कारण जैसे व्हीट एलर्जी हो गई या डस्ट माइट एलर्जी हो गई या कुछ और तरीके की एलर्जीज हो गई, वो कभी कभी एक्जिमा को बढ़ा सकती हैं, तो वो कभी कभी हम टेस्ट करके उसमें मदद कर पाते हैं, पर स्किन की केयर जो है वो सबसे पहले इसके अंदर एसेंशियल है। अच्छे मॉइस्चराइजर्स के साथ, कुछ दवाओं के साथ, कुछ मलम के साथ में स्किन की केयर बहुत जरूरी है
1: जी। डॉक्टर साहब, आशा पाठक हमें नीदरलैंड से मैसेज कर रही हैं, वो लिख रही हैं कि मेरे हस्बैंड को और मुझे थायराइड की समस्या है, कभी कभी गले में खिचखिच होती है, क्या ये थायराइड की वजह से होती है या कोई एलर्जी इसका कारण है?
2: जो गले में खिचखिच होना है उसका और थायराइड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है
1: जी।
2: जो गले में खिचखिच होना है, हाँ, वो पोस्ट नेजल ड्रिप, जैसे हमने कहा कि नाक के अंदर एलर्जी होने की वजह से अगर पानी पीछे टपकता है तो हो सकती है, या कभी कभी एसिडिटी, जिसको हम बोलते हैं कि तेजाब की मात्रा अधिक बनना, एसिडिटी अधिक बनना, उसकी वजह से, रिफ्लक्स की वजह से भी गले के अंदर कभी कभी तेजाब आ जाता है और खिचखिच की समस्या हो सकती है
1: जी। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमें कई हमारे श्रोता जो है व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं कि उनको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है और आपके द्वारा दी गई जानकारियां उनको बहुत खास लग रही है। इसके साथ ही हमें पवन कुमार शर्मा हुलास रोधापुर जिला बिहार से लिख रहे हैं कि मुझे घुमोरियों जैसे कुछ कुछ हो जाता है, हर साल एक ही जगह पर मुझे ये प्रॉब्लम होती है, क्या करना चाहिए, मैं इससे काफी परेशान हूँ
2: जी। ये जो घुमोरियाँ आप बता रहे हैं, इसको हमारी मेडिकल भाषा में काफी कुछ समय पर अर्टिकेरिया कहते हैं, और ये अर्टिकेरिया अगर कुछ समय के लिए

0: चलता है, 2 4 दिन 10 दिन चलता है, तो वो अक्सर वायरल इन्फेक्शन के साथ में,
1: हाँ
0: मौसम बदलाव के साथ में हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ जो होती है वो 2 या 3 महीने से अधिक चलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है, तब ऐसी स्थिति में ये एलर्जी की वजह से हो सकता है।
1: जी। एक और हमें देहरादून से मैसेज मिला है उषा जी का, वो लिख रही हैं कि जब भी घर की क्लीनिंग करती हूँ तो डस्ट के कांटेक्ट में आने से पूरी बॉडी पर एलर्जी रैशेस जैसा निकल जाता है और बहुत इचिंग होती है, मुझे कुछ मेडिसिन से भी एलर्जी है,
0: जी,
1: ऐसे में ये क्या करें,
0: जैसे
1: क्या
0: मैंने बताया
1: सॉल्यूशन
0: आपको,
1: है?
0: जैसे मैंने बताया आपको कि डस्ट माइट एक इस तरीके का कीटाणु है
1: जी
0: जो जो कण जो रिलीज करता है, वो कण जो है अगर सांस के नली में जाते हैं तो नाक की समस्या करते हैं, सांस की समस्या करते हैं, और अगर वही कण चमड़ी पे लगते हैं तो चमड़ी के अंदर भी वो खुजली की समस्या, एक्जिमा की समस्या, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
1: हाँ
0: जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपके उस डस्ट के अंदर वो पार्टिकल्स हैं जिनको कि पता लगाना जरूरी है कि वो
1: हाँ
0: क्या पार्टिकल्स हैं, और अगर उनको पता लगा के उनको हम रिमूव कर सकते हैं। पर आपके लिए तब तक के लिए एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि घर में ड्राई डस्टिंग न करें, आप जो भी करें वेट मॉपिंग, गीले पोछे की सफाई करें, वैक्यूम
1: जी।
0: क्लीनर का इस्तेमाल करें, वो शायद ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं
0: जी
1: उनका
0: जी
1: कॉल
0: जी
1: भी।
0: जी
1: हेलो
2: हेलो
1: जी।

0: हैं कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपके उस डस्ट के अंदर वो पार्टिकल्स हैं जिनको कि पता लगाना जरूरी है कि वो क्या पार्टिकल्स हैं, और अगर उनको पता लगा के उनको हम रिमूव कर सकते हैं। पर आपके लिए तब तक के लिए एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि घर में ड्राई डस्टिंग न करें, आप जो भी करें वेट मॉपिंग, गीले पोछे की सफाई करें, वैक्यूम
1: जी
0: क्लीनर का इस्तेमाल करें, वो शायद ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं
0: जी
1: उनका
0: जी
1: कॉल
0: जी
1: भी।
0: जी
1: हेलो
2: हेलो,
1: जी।
2: नमस्कार आप दोनों को।
1: नमस्कार
2: जी,
1: मैम।
2: मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मुझे
1: जी
2: पूछना था कि
1: नाम
2: मुझे
1: बताइए मैम
2: सपना,
1: अपना। ओके।
2: हाँ जी, मुझे पूछना था कि मुझे कुछ सालों से, 6-7 सालों से ठंडी चीजें खाने से, दूध दही मीठी चीजें खाने से, खट्टी चीजें, चावल दालें छोले राजमा, इन सब पे दर्दें बहुत ज्यादा होती हैं, और
1: जी।
2: अब तो मतलब जॉइंट्स में भी हो रहे हैं, जबकि मेरे RA फैक्टर, CRP सब नॉर्मल है। तो क्या ये एलर्जी है? और सेकंड क्वेश्चन था कि धूप अगरबत्ती घर में जलाने से, जोत, अगर जोत जलाने से आरती करते हैं जो,
1: जी,
2: तो क्या उससे भी पॉल्यूशन होता है?
0: तो जो आपका पहला प्रश्न है जिसके अंदर आपने पूछा, तो ये सीधे सीधे लक्षण एलर्जी के नहीं हैं।
1: जी
0: कभी कभी हमारे को कुछ अलग तरीके की बीमारियां होती हैं जो एलर्जी जैसे हमें लगती हैं। कभी कभी शरीर के अंदर विटामिन डी B12 की कमी होती है, कभी कुछ और तकलीफें होती हैं जिसको मास्ट सेल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जो बहुत रेयरली ही हम पकड़ पाते हैं, ज़्यादातर डिसऑर्डर्स नहीं देख पाते हैं। तो उनके सब ये लक्षण हो सकते हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, पर ये सीधे सीधे एलर्जी नहीं लगती है। दूसरी बात, बिल्कुल धूप बत्ती अगरबत्ती जो है वो
1: ये
0: काफ़ी ज़्यादा
1: आप
0: नुकसान
1: पहले
0: करती
1: बता
0: है,
1: भी
0: अभी
1: चुके
0: हमने
1: हैं।
0: बात किया।
1: जी।
0: लेकिन हाँ, इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव, सबसे अच्छा उपाय है कि जोत जलाना। तो आप जोत जला सकते हैं और उससे आप भगवान की पूजा कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जिन लोगों को पहले से स्किन, किसी तरह की भी स्किन एलर्जी है, क्या ऐसे लोगों को घर पर पेट्स से दूरी बनाकर रखनी चाहिए?
0: देखिए, हमें ये समझना है कि जो हमारी त्वचा है, जो स्किन
1: जी।
0: है, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ये स्किन जो होती है, ये हमारे पूरे शरीर को, पूरी पूरे अंगों को बचा कर रखती है। और ये स्किन का एक रोबस्ट, एक रिजिड, एक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरीके से हमारे शरीर के किले की वो मजबूत दीवार है जिसके अंदर कभी भी अगर कोई किसी किस्म की तकलीफ होगी, होल्स होंगे, वो सेंसिटिव होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर एलर्जीज हमारे को अधिक होंगी।
1: जी
0: तो जो लोग, जिनको स्किन की समस्या है, उनको हमेशा तरीके तरीके की एलर्जीज अधिक आएंगी, ज़्यादा आएंगी, बार बार आएंगी, परेशान करेंगी। और रही बात पेट्स की, तो पेट्स के लिए तो हम जनरली बोलते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की एलर्जी है, उसके लिए कोई भी पेट रिकमेंडेड नहीं है, चाहे उनको
1: जी
0: पेट से एलर्जी हो या ना हो।
1: ना हो। जी। डॉक्टर सर, आजकल फूड एलर्जी की बहुत चर्चा होती है, फूड एलर्जी में और फूड इंटॉलरेंस में क्या अंतर है? क्या, किन खाद्य पदार्थों से सबसे ज्यादा एलर्जी हो
0: ये बहुत
1: सकती
0: बहुत
1: है?
0: महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने पूछा। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं कोई एक चीज़ खाता हूँ, जैसे कोई कहता है मैं गोभी खाता हूँ या मैं ये चीज़ खाता हूँ, और उसके बाद मेरे पेट में थोड़ा अफारा आ जाता है, गैस बन जाती है, पेट फूलने लगता है या
1: सर,
0: उल्टी
1: फूड
0: होती है।
1: एलर्जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस में क्या अंतर है?
0: हाँ, वही बता रहा
1: जी
0: हूँ।
1: जी
0: तो जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं जब कभी कोई खाना खाता हूँ, ये
1: जी
0: कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाता हूँ, उससे मुझे पेट के लक्षण आ जाते हैं, गैस बन जाती है, और उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद उनको उस चीज़ से एलर्जी है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनटॉलरेंस है। इनटॉलरेंस क्या होती है कि उस शरीर के, उस फूड के जो कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है, उसको शरीर ढंग से पचा नहीं पाता, और जिसकी वजह से उसको गैशियस डिस्टेंशन, गैस बनने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है, पेट की समस्याएं आती हैं, तो ये इनटॉलरेंस के लक्षण है। लेकिन जो वाकई में फूड एलर्जी है, वो उसके प्रोटीन की मात्रा की वजह से होती है, जिसमें लक्षण जरूरी नहीं है पेट के आए। हो सकता है उसको शरीर पर खुजली होनी शुरू हो जाए, हो सकता है उसको छींके आने लग जाए, हो सकता है सांस फूलने लग जाए, आँख की समस्या आने लग जाए, जबकि उसने फूड का संपर्क हुआ है। जिसको ट्रू फूड एलर्जी है, कभी कभी वो फूड को सिर्फ टच भी करता है, तो टच करने से भी उसको लक्षण आ सकते हैं, उसको खाना भी जरूरी नहीं है उसको। तो फूड एलर्जी और इंटॉलरेंस दोनों अलग-अलग चीजें
1: जी
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब, एलर्जी से रिलेटेड जो टेस्टेज हैं उनके बारे में बताइए, और क्या कोई आधुनिक इलाज आज उपलब्ध है एलर्जीज के
0: ये
1: लिए?
0: ना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले एलर्जी के अंदर हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब मरीज से बात करना। बहुत बार हम मरीज से लगभग आधा घंटा भी बात करते हैं, उनसे बहुत सारी तरीके के सवाल पूछते हैं, उनकी बीमारी से संबंधित काफ़ी सवाल होते हैं जो बीमारी से संबंधित नहीं भी होते, घर के वातावरण के बारे में, धूप कितनी आती है, सनलाइट कितनी है, उसके साथ में वेंटिलेशन कैसा है घर के अंदर, घर में कोई पेड़ पौधे तो नहीं है, घर की दीवारें कैसी हैं, सीलन तो नहीं है, ये सारी
1: जी
0: चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत बार आपने गौर किया होगा, स्पेशली पेट्स की जो एलर्जी होती है, जैसे कैट की, बिल्ली की जो एलर्जी है, तो
1: जी
0: कैट के जो डेंडर्स की एलर्जी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपका बच्चा स्कूल गया है और उसकी क्लास में कोई एक दूसरा बच्चा है जिसके घर में कैट है, और वो कैट में अपने घर से खेलता है और वो यहाँ पे आता है, कैट के डेंडर अपने कपड़ों पर लेके आता है, वही डेंडर आपके बच्चे के कपड़ों पर पैसिवली ट्रांसफर होते हैं और आपके बच्चे को लक्षण आ जाते हैं, और आपका बच्चा कभी कैट के पास गया ही नहीं। तो हिस्ट्री हमारे लिए सबसे बड़ी क्लू होती है।
1: जी
0: उसके बाद में फिर हिस्ट्री लेने के बाद में फिर हम एलर्जी टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर मैं

0: और आगे कुछ इंजेक्शन्स आते हैं जिनको लाइफ को बचाने के लिए उनको अपने पास रखा जा सके प्रिवेंशन के तौर पे।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुछ हिडन एलर्जीज भी होती हैं जो किसी खास परिस्थिति में उभरती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बार ऐसा होता है, कई सारे कारण है, जैसे एक है इम्प्रॉपर लेबलिंग ऑफ फूड्स। बहुत बार आपने देखा है कि खाने पीने के अंदर जो लेबल्स या तो होते ही नहीं है, लेबल लगे होते हैं तो उसमें आधी अधूरी चीज़ें लिखी होती हैं, पूरी तरीके से चीज़ें नहीं लिखी होती, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं बताते कि इसमें क्या चीज़ें हैं। कभी कभी फूड की मिक्सिंग होती है, आप एक ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहीं पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ एक ही
1: जी
0: शेफ जो है वो बना रहा है, परोस रहा है, और कभी कभी सेम ग्लव्स के साथ इधर और उधर मिक्सिंग होती है। तो ये जो सारे कारण हैं ये हिडन एलर्जेंस होते हैं। आजकल हम लोग वीट नहीं खाते, आजकल हम लोग जो होते हैं बड़े मिक्स फूड खाते हैं, जैसे पिज्जा पास्ता। ये जो पिज्जा पास्ता है क्या है, ये सब एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट का, जिसके अंदर आपको पता भी नहीं चलता कि कभी किसी को नट की एलर्जी है, किसी को वीट की एलर्जी है, और वो उभर के एकदम से सामने आ सकती है। और इसी तरीके से कभी कभी कुछ लोगों को पार्शियल एलर्जी होती है, जैसे वीट से थोड़ी एलर्जी है और उसी के साथ कोई दूसरा ट्रिगर जैसे पेन किलर की मेडिसिन खा लिया, एक्सरसाइज कर लिया, जिसको हम बोलते हैं फूड डिपेंडेंट एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफिलेक्सिस, या हमें दो या तीन ट्रिगर डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन में चाहिए होते हैं, तब जाके मरीज को उस एलर्जी के लक्षण आते हैं, लेकिन एक ट्रिगर से वो एलर्जी के लक्षण नहीं दिखाई
1: जी
0: देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एलर्जी अवेयरनेस के लिए विभिन्न जो गतिविधियां की जाती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
0: देखिए एलर्जी अवेयरनेस के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं वो काफ़ी जोरों शोरों से काफ़ी गतिविधियां कर रहे हैं।
1: जी
0: जैसे मैं आज अगर देखें तो FM एयर का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ इस मौके को देने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए। इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, हमारा भी अपना एक सोशल चैनल है आई सास के नाम से, उस पर करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में हम सभी से जुड़ें, और हम उस अवेयरनेस के लिए हम उन सबसे सबको बात करते रहें।
1: जी। डॉक्टर साहब, एलर्जी को लेकर ना समाज में की भ्रांतियां हैं कि बच्चों को जो एलर्जी है अपने आप ठीक हो जाती है। आप इन मिथकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और
0: देखिए
1: एलर्जीज का इलाज नहीं है, कई ऐसे मिथक भी
0: जी
1: हैं। जी
0: जी
1: जी
0: जी जो कभी काफ़ी लोग कहते हैं कि जैसे एलर्जी तो अल्लाह की मर्ज़ी है, काफ़ी लोग कहते हैं कि एलर्जी तो जन्म के साथ आई है तो वो मरने के साथ ही जाएगी, वो नहीं जाएगी, पर ऐसा नहीं है।
1: जी
0: सबसे पहली चीज़ ये है कि एलर्जी को हमें समझना ज़रूरी है कि एलर्जी क्यों हो रही है, हमारा शरीर की प्रतिक्रिया किसी दूसरी चीज़ को क्यों रिएक्ट कर रही है, और फिर उसके बाद जब एक बार वो समझ में आए तो उसके बाद में उसका यथासंभव टेस्ट और यथासंभव इलाज किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनोथेरेपी। दूसरी चीज़ जो है बचाव, बचाव एक बहुत ज़रूरी है। ये एलर्जी जो है ये एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। अगर आप बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग गांव में रहते थे,
1: जी
0: जो लोग पुराने लाइफस्टाइल के साथ जीते थे, उनमें एलर्जीज कम मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम विदेशीकरण की तरफ बढ़ते हैं, हम बहुत हाइजीन की तरफ बढ़ते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ऐसी स्थिति के अंदर हम कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं अपने जो पुराने जो मिट्टी और जो बाकी चीज़ें हैं उनको छोड़ते चले जाते हैं, और शायद उसी वजह से हमारा शरीर कभी सीख नहीं पाता कि इन चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से कैसे रिएक्ट करना है, और फिर जब एकदम से किसी चीज़ के संपर्क में आता है तो फिर वो एबनॉर्मली रिएक्ट करता है।
1: जी
0: तो ये एक लाइफ स्टाइल को हमें सुधारना है,
1: कि
0: चाहे फिर
1: सादा जीवन, सरल
0: जी
1: जीवन ही।
0: सबसे ऊंचा है, सबसे
1: जी
0: ऊंचा है, वो
1: बिल्कुल
0: बहुत ज़रूरी है, जो हमें
1: जी
0: समझना ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहब, क्योंकि अब कार्यक्रम में बहुत कम समय रह गया है और आज हमने बहुत सी जानकारियां इस विषय पर प्राप्त किया आपसे, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और कौन सी बातें जिन्हें हर व्यक्ति को एलर्जी के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए?
0: देखिए ये बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले हमें समझना है कि एलर्जी जो है एक बहुत ही कॉमन चीज़ है।
1: जी
0: अगर देखें प्रैक्टिकली तो हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी एलर्जी से सफ़र कर चुका है, गुजर चुका है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको छींकें ना आई हो, सांस ना फूला हो, तो हर एक व्यक्ति जो है उसको सफ़र कर चुका है, तो एक बहुत कॉमन चीज़ है, और अगर इसको तरीके से अप्रोच किया जाए तो हाँ ये एलर्जी का इलाज किया जा सकता है। दूसरा हमें ये समझना है कि एलर्जी को अगर न ढंग से किया जाए तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं, अगर आज एक बच्चा है जिसको सांस फूल रहा है, जो अपना बच्चा रात को सो नहीं पा रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, तो उसके पेरेंट्स भी बेचैन हैं,
1: जी
0: वो
1: जी
0: पेरेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रभावित है, वो भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि एलर्जी का इलाज नहीं किया जा सकता, समय रहते अगर एलर्जी के कारणों को पकड़ा जाए, उनको दूर किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से अगर उनका इलाज किया जाए, तो उसको बहुत हद तक ठीक किया जा
1: किया
0: सकता
1: जा
0: है, व्यक्ति
1: सकता
0: अपनी साधारण लाइफ जी सकता है, और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी। तो आज हमने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में बात की, एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है, और इस पर हमें खास जानकारी दी डॉक्टर नीरज गुप्ता ने, जो है एलर्जी स्पेशलिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे इस शो में आए और हमें इतनी खास जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है जिसे चल रहा प्रोग्राम हैलो जलंधर। हैलो जलंधर प्रोग्राम दे विच दोस्तों अज गलबात दा सिलसिला चल रहा जी कि तुसीं सानूं गाना सुनाउणा है फुल गहना जां शहर, किसी भी शहर ते, किसी भी गहने ते, किसी भी फुल ते कोई भी गाना तुहानूं आउंदा जी सुना सकदे हो जी। तुसीं अपने आरजे दोस्त विपिन सुमन नूं कॉल किवें करनी है, नंबर है जी 0181 2342 174। इस नंबर नूं डायल करके साडे दोस्त पहुँच चुके हैं जी, गाना भी बिल्कुल तैयार है, कहिंदे जी आउण दिओ, आओ जी फिर सुणदे इहनां तों। हैलो जी।
1: हैलो,
0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं जनाब प्रोग्राम हैलो जलंधर च। कौन जनाब, कित्थों गल कर रहे ने?
1: सर जी अजय कुमार बोल रहा बस्ती नौ जलंधर से।
0: अजय जी की हाल चाल ने?
1: बहुत वधिया सर जी,
0: ठीक ठाक।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अजय जी किन्ने क गाने आउंदे होणगे भला तुहानूं?
1: तुसीं टास छेड़िया है बस माड़ा जिहा याद कीता इक।
0: अच्छा, नहीं नहीं वैसे तुहानूं कोई अंदाजन किन्ने क गाने आउंदे होणगे? 1000 2000 3000 4000 इदां
1: ਗਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਈਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ।
0: ਚਲੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫੁੱਲ ਗਹਿਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ
1: ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ।
0: ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ।
1: ਫੁੱਲ ਕਾ ਤਾਰੋ ਕਾ ਸਬਕਾ

जी दोस्तों, हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम हैलो जलंधर। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उन्हां दोस्तों का जिन्होंने कॉल करके अज्ज दे इस प्रोग्राम नूं होर खूबसूरत किया। थैंक यू सो मच जी। सो FM बैंड 102.7 MHz ते आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है जी। तो हुण असीं तुहानूं राष्ट्रपति भवन नवीं दिल्ली विखे आयोजित होण वाले रक्षा अलंकरण समारोह का अखीं देखिया हाल अपने दिल्ली केंद्र तों सुनवावांगे।

0: राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र लालस और दीपिका दास। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
2: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's defense investiture ceremony, in which Honorable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring the Ati Vishisht Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal and Sarvottam Youth Seva Medal.
1: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, साथ ही मौजूद हैं इस वक्त सीडीएस जनरल एनएस राजासुब्रमणी, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर पधारेंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा। हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि 105 बहादुरों को, सैनिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए 56 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएं देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध में विशेष बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 7 सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे।
2: Dear listeners, as we witness this distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the Honorable President.
1: हम ये बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार, उपराष्ट्रपति जी इस वक्त पधार चुके हैं और वे विराजमान हैं और उन्हीं के साथ ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ 3-3 सैनिक मौजूद हैं, जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे

0: और आगे की रोज में वे लोग, इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहां पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में।
1: Total of 105 awards will be conferred to the awardees today. A very prestigious event that honors armed forces, security personnel for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
0: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए, और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुबेदार प्रेम बहादुर गुरंग बैंड मास्टर हैं महारेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। और ये बिगुल की आवाज़ आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करती हुई गणतंत्र मंडप में पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियां पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई है, नीले रंग का बॉर्डर और थोड़ा सा सुनहरी गुलाबी रंग उनकी साड़ी में, उनके आगे और पीछे उनके एडीसी चलते हुए धीरे धीरे सधे हुए कदमों से राष्ट्रपति जी अपने आसन तक जाती हुई, इनके ठीक पीछे बुद्ध की प्रतिमा।

0: वंदे मातरम और राष्ट्रगान। अब रक्षा सचिव राजेश जी अनुमति प्राप्त करते हुए आज के समारोह।
1: राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने अभिवादन कर स्वीकृति दी और अब ये रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है।
2: The first set of awards that
3: अति विशिष्ट सेवा मेडल और साधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल तरुण चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल उड़ान पायलट,

0: लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय VSM द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने सैल्यूट करते हुए सदैव कदमों से और प्राप्त करेंगे वे अति विशिष्ट सेवा मेडल। और ये तालियां इस बात का परिचायक कि सैनिक ने राष्ट्र की सेवा की है।
0: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल बा।
2: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला अपने सैनिक परिधान में कोर ऑफ इंजीनियर्स के आप अधिकारी हैं और अपना सम्मान प्राप्त करके
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा सेना मेडल।
1: कोर ऑफ सिग्नल्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मान देते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद
0: लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह YSM SM सलामी देते हुए राष्ट्रपति जी को और अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए सदैव कदमों से राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गौरव का क्षण इन सैन्य अधिकारियों के लिए और परिवार के सदस्य खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिवादन करते
0: साक्षी बनते हुए। रंजीत सिंह
2: Lieutenant General Ranjit Singh, the Regiment of Artillery, saluting the President and marching towards the dais.
1: Artillery के अधिकारी हैं आप, Lieutenant General Ranjit Singh, Regiment of Artillery के अति विशिष्ट सेवा मेडल और ये salute
0: Lieutenant General Ajay Kumar.

0: विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
2: इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
1: डेकोरेटेड विद अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क इन्फेंट्री के अधिकारी हैं और भारतीय सशस्त्र सेना भारतीय सेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है, इसलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह वी आर के रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
0: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने और अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
1: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेवा मेडल रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, आज इन्हें मिलने जा रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल। द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं आप, राष्ट्रपति जी के सामने जाकर उन्हें सैल्यूट करते हुए और अपना मेडल प्राप्त करते हुए।
0: लेफ्टिनेंट जनरल चियारत गोपालन मुरलीधरन।
1: लेफ्टिनेंट जनरल चियारत गोपालन मुरलीधरन द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स।
2: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल चियारत गोपालन मुरलीधरन, भारतीय सेना की ओलिव ग्रीन वर्दी धारण किए हुए राष्ट्रपति जी से अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए। परिवार के सदस्य उनकी पत्नी और उनकी पुत्री
0: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा रेसिपिएंट ऑफ सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा VSM प्राप्त कर चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। राष्ट्रपति जी ने उनके सीने पर ये मेडल उनकी शान बढ़ाने के लिए लगाया। पुत्री और पत्नी
0: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई विशिष्ट सेवा मेडल विल रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई VSM प्राप्त कर चुके हैं, आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। भारतीय नौसेना की सफेद वर्दी और इस वक्त प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल रजत कपूर।
2: वाइस एडमिरल रजत कपूर जाते हुए राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ पहले सैल्यूट किया है, नेवी का जो अलग सैल्यूट होता है, उसके बाद जाते हुए मंच की तरफ और अब प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल रजत कपूर रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली।
2: और अब बारी भारतीय नौसेना के एक और अधिकारी वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली की। आप अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के, भारतीय नौसेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है, इसीलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है आज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
3: वाइस एडमिरल सुशील मेनन विशिष्ट सेवा मेडल।

0: और अगली बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की वाइस एडमिरल सुशील मेनन की। विशिष्ट सेवा मेडल इनके सीने पर टंगा हुआ है जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने और पहुंचकर अपना पदक प्राप्त करते हुए।
1: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी।
0: नौसेना के ही सम्मानों की बारी अब आगे आते हुए वाइस एडमिरल अनिल जग्गी पहले मंच के सामने जाकर राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं, उसके बाद में पदक प्राप्त करने के बाद भी सैल्यूट करते हैं, फिर अपने स्थान तक जाते हैं।
2: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: सर्जन रियर एडमिरल वर्तमान में सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे विशिष्ट सेवा मेडल।
0: रबारी सर्जन रियर एडमिरल अब सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे की, जिन्हें वीएसएम मिल चुका है और आज प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: सर्जन रियर एडमिरल नाउ सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
0: और अब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बारी, एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल कोंडन कोलंगारा अबू अहमद संजीव विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल कोंडन कोलंगारा अबू अहमद संजीव वीएसएम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के सदस्य हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर वाइस मार्शल वर्तमान में एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर वाइस मार्शल नाउ एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव विशिष्ट सेवा मेडल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
0: एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के एयर वाइस मार्शल अब एयर मार्शल हैं आप सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारी राष्ट्रपति जी को।
1: अपर महानिदेशक डॉनी माइकल प्रेसिडेंस तटरक्षक मेडल तटरक्षक मेडल।
2: एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉनी माइकल पीटीएम टीएम।
0: भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डॉनी माइकल अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। मुस्कुराकर फोटो खिंचाते हुए उनकी धर्मपत्नी तालियां बजाते हुए सैल्यूट करके वापस अपने स्थान तक जाते हुए।
1: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय सेवा मेडल वीएसएम रिटायर्ड।
0: नारी शक्ति का प्रतीक सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, अब सेवानिवृत्त है, लेकिन आज सम्मान करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें प्रदान करती हुई, और ये इतनी सारी तालियां इस बात का प्रतीक हैं।
1: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा सेना मेडल बार विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा सेना मेडल वीएसएम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा विशिष्ट सेवा मेडल पहले से लगा हुआ है और आज प्राप्त हुआ है इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पहल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अब बारी है इन्फेंट्री के ही एक और अधिकारी मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल की, विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्राप्त हो चुका था, आज इन्हें मिल रहा है।

0: व्यक्ति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल VSM द इन्फेंट्री रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दैट विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल सुजीत मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी SM VSM द आर्मी एयर डिफेंस।
0: आर्मी एयर डिफेंस के अधिकारी मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को
2: मेजर जनरल आशीष शाह सेना मेडल।
1: मेजर जनरल आशीष शाह सेना मेडल द आर्मड कॉर्प्स मार्चिंग टुवर्ड्स द ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्मड कोर के अधिकारी मेजर जनरल आशीष शाह महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए और प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल अमर राम दसानी युद्ध सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल अमर राम दसानी युद्ध सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल अमर राम दसानी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सामने मौजूद हैं और प्राप्त कर रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल द इन्फेंट्री टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: सैल्यूट करते हुए और जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं इन्फेंट्री के अधिकारी हैं। और एक जोशीली मुस्कान उनके चेहरे पर सलामी देते हुए
3: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल
0: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के मेजर जनरल तरुण अग्रवाल आर्टिलरी का अधिकारी राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
1: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
3: मेजर जनरल वुदे परिदा विशिष्ट सेवा मेडल।
1: Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, the Regiment of Artillery, saluting the President and receiving the Ati Vishesh Seva Medal.
0: The Regiment of Artillery ka adhikari Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, inhe pradan kiya ja chuka hai, Ati Vishesh Seva Medal.
3: Major General Sumit Mehta, Vishesh Seva Medal.
1: Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, the Armored Corps.
0: Armored Corps ke adhikari Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal. Ab Rashtrapati ji ne pradan karengi Ati Vishisht Seva Medal.
3: Major General Vikrant Suresh Deshpande.
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं आप मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
1: मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे इन्फेंट्री।
3: मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडवाल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: Major General Kuleshwar Singh Datwal, earlier recipient of Sena Medal and Vishesh Sena Medal, will receive the Ati Vishesh Seva Medal.
0: Infantry ka adhikari Major General Kuleshwar Singh Datwal, Vishesh Seva Medal se alankrit ho chuke hain aur aaj alankrit honge Ati Vishesh Seva Medal se. Ye ek aur khushi ki baat ki unki putri
3: Major General Vivek Narang.
1: Major General Vivek Narang from the infantry

0: Saluting the President.
1: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल विवेक नारंग। राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना पदक ग्रहण करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। गर्वीली मुस्कान, उनकी पुत्री और पत्नी तालियां बजाकर।
2: मेजर जनरल परमवीर सिंह पुनिया, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल परमवीर सिंह पुनिया, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, विल रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी परमवीर सिंह पुनिया, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करेंगे राष्ट्रपति जी से।

0: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के ही अधिकारियों की बारी चलती हुई, बहुत सेवा की इन्होंने राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं की, और अब बारी है मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर की।
2: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर YSM SM रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेना मेडल, सेना मेडल, सल्यूटिंग द प्रेसिडेंट एंड रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: युद्ध सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं इन्फेंट्री के मेजर जनरल अरिंदम साहा, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। टुडे इट्स हिज टर्न टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी SM BSM मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें मिलता हुआ।
0: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें प्राप्त होता हुआ राष्ट्रपति जी के हाथों, जो कि सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं।
0: मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल मनदीप सिंह, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल मनदीप सिंह, सेना मेडल इज एन एक्स्ट्रा रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के अधिकारियों की सीरीज चलती हुई, मेजर जनरल मनदीप सिंह की बारी है प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: रियर एडमिरल निर्भय बापना, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड रियर एडमिरल निर्भय बापना, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: अब आरी आ रही है नौसेना के अधिकारियों की, रियर एडमिरल निर्भय बापना, विशिष्ट सेवा मेडल आज सम्मानित हो रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल से राष्ट्रपति जी के हाथों से।
0: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी।
2: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी, मेडिकल, टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना की चिकित्सा विंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी, राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल

0: Air Vice Marshal Vadapalli Ravi Satyanarayan Raju Vishisht Seva Medal.
1: Air Vice Marshal Vadapalli Ravi Satyanarayan Raju Vishisht Seva Medal, Aeronautical Engineering, to receive that Vishisht Seva Medal.
2: और अब वायुसेना के एक और अधिकारी एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार, एयर वाइस मार्शल वाडापल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल विंग के अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा।
0: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, VM flying pilot,
2: अब भारती,
1: receiving that विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह,
1: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, एडमिनिस्ट्रेशन फाइटर कंट्रोलर।
2: भारतीय वायुसेना के फाइटर कंट्रोलर हैं एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह। आपको प्राप्त होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल आपकी सेवाओं के लिए।
0: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा, VM flying pilot, is the next recipient of Ati Vishisht Seva Medal.
2: और अब बारी अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा की। आप एक पायलट हैं।
0: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, विशिष्ट सेवा मेडल, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज एक और उपलब्धि इनके कैरियर में जुड़ती हुई, इन्हें मिलता हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, VSM, रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल संदीप कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
1: Major General Sandeep Kumar, Vishisht Seva Medal, the Judge Advocate General Department, retired, is receiving Tati Vishisht Seva Medal.
2: Major General Sandeep Kumar, Vishisht Seva Medal, the Judge Advocate General Department, retired ho chuke hain, Ati Vishisht Seva Medal, prapt karte hue Rashtrapati ji ke kar kamlon se, aur salute.
0: Major General Parag Anant Deshmukh, Sevanivrat.
1: Major General Parag Anand Deshmukh, the Army Medical Corps, retired, is the next recipient of the Ati Vishisht Seva Medal this evening.
2: Army Medical Corps ke Major General Parag Anand Deshmukh ab retire ho chuke hain, prapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal.
0: Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, Udan Pilot, Sevanivrat.
1: Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, flying pilot, retired.
2: और अब राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, आप वायुसेना में उड़ान पायलट थे, रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से।

0: Air Vice Marshal Nand Kumar Nair wishest Seva Medal Seva Nivrit.
1: Air Vice Marshal Nand Kumar Nair, VSM Aeronautical Engineering Electronics, retired, receiving Dati Vishisht Seva Medal.
2: Bharati Vayu Sena ke Aeronautical Engineering Wing mein rahe aur khas taur par electronics ka kaam sambhalne wale Air Vice Marshal Nand Kumar Nair ab retire ho chuke hain, praapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal aur salute karte hue
0: Brigadier Pavan Dhul Vishisht Seva Medal.
1: Brigadier Pavan Dhul, VSM, the Army Medical Corps.
2: Army Medical Corps ke adhikari Brigadier Pavan Dhul विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की, प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से अब बारी सैल्यूट की।
0: सुबेदार एच होकाटो सेमा 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉटपट कांस्य पदक विजेता वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित।
1: Subedar H. Hokako Sema, 9 Assam, recipient of Arjun Awards.
2: Subedar Hokato Sema, kaun nahi janta inhe, Bharatiya Sena ke hain, lekin Arjun Puraskar mil chuka hai, shot put ke khiladi rahe hain, 9 Assam ke, Rashtrapati ji ke samne apna padak prapt karte hue, Ati Vishisht Seva Medal.
3: अब उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध, संघर्ष, युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: हमारे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। आर्मर्ड कोर हेडक्वार्टर साउथ सदर्न कमांड का नेतृत्व करते हैं, उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से।
1: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, पीवीएसएम एवीएसएम, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
3: एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
2: और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट है, आज प्राप्त करते हुए युद्ध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल मनीष खन्ना, एवीएसएम, वीएम फ्लाइंग, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, एवीएसएम, एसएम, द पैराशूट रेजिमेंट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
2: अगला युद्ध उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव को मिलता हुआ, अति विशिष्ट सेवा मेडल, पैराशूट रेजिमेंट हेडक्वार्टर के आप अधिकारी हैं।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: गढ़वाल राइफल्स हेडक्वार्टर 9 कोर के अधिकारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत।
1: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, एवीएसएम, वीएसएम, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर, एवीएसएम, वाईएसएम, फ्रॉम द असम रेजिमेंट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: द असम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम एंड वाईएसएम फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल।

0: युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति जी के
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, ऑल योर रेसिपिएंट ऑफ AVSM, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल तरुण सोपती अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द उत्तम युद्ध सेवा मेडल इज वाइस एडमिरल तरुण सोपती AVSM VSM।
0: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल अब मिलता हुआ उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल।

0: Next recipient of the Uttam Youth Seva Medal is Vice Admiral Tarun Sopti, AVSN, VSN.
1: नौसैनिक अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल अब मिलता हुआ उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, earlier recipient of Ati Vishish Seva Medal, Vayu Medal, Flying Pilot, receiving the Uttam Youth Seva Medal.
1: लड़ाकू विमान उड़ाते हैं आप, एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: कमोडोर अजय कुमार चौधरी, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: और अब बारी है एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी की। आप फ्लाइंग पायलट हैं और युद्ध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर कमोडोर प्रभात मलिक, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: एयर कमोडोर प्रभात मलिक, वायुसेना मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: वायुसेना के ही एक और अधिकारी अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल। एयर कमोडोर प्रभात मलिक।
2: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर, उड़ान पायलट।
0: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर, फ्लाइंग पायलट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: और अब बारी वायुसेना के एक और अधिकारी की कि वे जाएं और राष्ट्रपति जी से उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करें। यह हैं ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर।
3: परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सर्वप्रथम वाइस एडमिरल वर्तमान एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल नाउ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: और अब बारी परम विशिष्ट सेवा मेडल की। सबसे पहले एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं, एवीएसएम है, वीएसएम है, प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह एवीएसएम वाईएसएम वीएसएम फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: परम विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रृंखला में अब बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की। अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं।
3: वाइस एडमिरल संजय बात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
0: The next recipient of the Param Vishisht Seva Medal this evening is Vice Admiral Sanjay Vatsayan, AVSN, NM.
1: भारतीय नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल संजय वात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल, नेवी मेडल प्राप्त कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करके राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए।
3: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
0: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: और अब जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के सामने अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
3: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एवीएसएम, वीएम, वीएसएम, फ्लाइंग

0: Pilot is the next recipient of the Param Vishisht Seva Medal.
1: अब राष्ट्रपति जी से परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने जा रहे हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अब भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
2: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल।
0: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: परम विशिष्ट सेवा मेडल की श्रृंखला में अब माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, आप पायलट हैं, भारतीय वायुसेना के अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
2: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल सित्रपल्ली श्रीनिवास, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना के एक और अधिकारी एयर मार्शल सित्रपल्ली श्रीनिवास परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
2: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द इन्फेंट्री, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
2: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इसी श्रृंखला में आज जुड़ने जा रहा है परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली, UYSM, AVSM, SM, VSM फ्रॉम द इन्फेंट्री टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी, UYSM, AVSM, SM फ्रॉम द इन्फेंट्री, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही, UYSM, AVSM, YSM, SM फ्रॉम द इन्फेंट्री, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही प्राप्त करते हुए अपना सम्मान परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग इज लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा, AVSM, SM फ्रॉम द इन्फेंट्री।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त करते हुए

0: परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर आइवन डिकुन्हा, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर आइवन डिकुन्हा, सेना मेडल फ्रॉम द आर्मी एयर डिफेंस, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्मी एयर डिफेंस के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर आइवन डिकुन्हा अप्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी हैं आप, लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से।
1: सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अबारी नारी शक्ति की वाइस एडमिरल आरती सरीन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं और आज गौरव से प्राप्त कर रही हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे हैं मैकेनिकल विंग में, एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल सूरज सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उड़ान पायलट, सेवानिवृत्त।
2: The next recipient of Param Vishesh Seva Medal this evening is Air Marshal Surat Singh, AVSM, VM, VSM, retired.
0: भारतीय वायु सेना के पायलट रहे हैं एयर मार्शल सूरत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
3: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, अति विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: और अब पारी है परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया की। आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे और रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अपना पदक राष्ट्रपति जी के हाथों से।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद, रिटायर होने के बाद आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, फ्रॉम द इन्फेंट्री, रिटायर्ड।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी, भारतीय सेना को आपने अपनी सेवाएं दी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना,

0: की विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
1: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स रिटायर्ड।
2: और अब बारी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की। सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना की अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप रिटायर हो चुके हैं और प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
1: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड विल रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: कोर ऑफ सिग्नल्स में आपने काम किया था, लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं रिटायर होने के बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल वायुसेना मेडल सेवानिवृत्त।
1: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेना मेडल एंड वायु मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना में रहकर आपने बहुत उड़ाने भरी है, एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
2: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल।
1: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: अगला परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के आप अधिकारी रहे हैं।
0: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल इज नाउ रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के कर कमलों से। मेडल प्राप्त करने के बाद उन्हें सैल्यूट करते हुए
0: मेजर जनरल रुपेश मेहता सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल रुपेश मेहता सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल रूपेश मेहता की बारी है अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल ग्रहण करने की। आप विशिष्ट सेवा मेडल से पहले ही अलंकृत हो चुके हैं।
3: अब सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल।
1: द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा पीवीएसएम एवीएसएम सीएम फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड।
2: सात बहादुरों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सबसे पहले बारी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल। मद्रास रेजिमेंट के आप अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल नगेश कपूर परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल वायु सेना मेडल।
1: एयर मार्शल नागेश कपूर पीवीएसएम एवीएसएम वीएम फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने की बारी अब है भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर मार्शल नागेश कपूर की। परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल। आप फ्लाइंग पायलट हैं भारतीय वायु

0: सेनापति
1: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, UISM, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी।
0: कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी, विशिष्ट सेवाएं दी आपने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
2: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेना मेडल, वायु सेना मेडल फ्रॉम फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना के एक और उत्कृष्ट अधिकारी पायलट एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और अपने
1: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, सेवा निवृत्त।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, PVSM, AVSM, NM रिटायर्ड।
0: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अब प्राप्त कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। आपने भारतीय नौसेना में युद्ध के दौरान
1: एयर मार्शल दी थी। नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, सेवा निवृत्त।
2: एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना के एक उत्कृष्ट अधिकारी और पायलट एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा निवृत्त।
2: The next recipient of Sarvottam Youth Seva Medal is Air Marshal Jitendra Mishra, AVSM, VSM, Flying Pilot, retired.
0: भारतीय वायुसेना के एक और पायलट रहे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को। और इसी के साथ आज के जो रक्षा अलंकरण थे उनका समापन होता हुआ रक्षा सचिव राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए।
3: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
0: माननीय राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी।

0: रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण ये था, जिसमें विशिष्ट सेवा पुरस्कार आज सशस्त्र सेनाओं के विशिष्ट अधिकारियों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति जी अब गणतंत्र मंडप से सबका अभिवादन करते हुए धीरे धीरे बाहर जाती, उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और उनके ठीक पीछे अन्य अधिकारी। और ये बता दें कि आज 105 अधिकारियों को ये विशिष्ट अलंकरण यहाँ पर प्रदान किए गए, जिसका आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी के जरिए सुन रहे थे।
1: As this solemn ceremony draws to a close, let us offer our deepest respect to all the awardees and their families. May we always remember that the spirit of duty that drives our armed forces. I, Lipika Das, along with my co-commentator, Mahindra Singh Lales, OB in charge, Prabha Kumar, with our technical team, Ashok Kumar Mishra, Sumit Katiyar, Hemraj Meena, and producer, Pramod Kumar, take you back to the studios of Akashvani.
2: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे महेंद्र लालस और लिपिका दास। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਅਲੰਕਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਨਬੋ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6:13 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
4: कोई हसीना जब रूठ जाती है तो
5: गाँव वालों बसंती

समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम, सुनते रहिए 102.7 FM Rainbow।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अलग ही वाइब माहौल एनर्जी आन पहुंची है। कौन है ओ एनर्जी, कौन है ओ शख्सियत, कौन है ओ इंसान, कौन है ओ नौजवान जिहड़ा तुहानू 11 बजे तक दी पूरी डोज मतलब एनर्जेटिक डोज हैगा इनफोटेनमेंट दा जो होएगा खजाना जिहड़ा कोई नहीं लगाएगा बहाना जिहड़ा जिन्हू आखदा है कि यार तू है तो है जमाना। सो इस तो ज़्यादा होर राइमिंग मैं नहीं करांगा क्योंकि भाई साहब आ चुके ने कहिंदे भाई साहब बहुत बोल लिया तुसीं कहिंदे तुसीं सवेर दे माफ़ी चाहुंदा दोपहर दे 2 बजे तो लैके हुण तक कहिंदे लगे हुए हो हुण सीट नूं कहिंदे तुसीं खाली करना। मैं कहा जी ठीक है पर जांदे जांदे दोस्तों के कोलों इजाजत लै ली है जी। सो जांदे जांदे दोस्तों जो अज असीं मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ियां उन्हां तो बस यही कहना चाहुंगा कि बहाने ना बनाइए, बहाना फड़ना सीखिए, मतलब कि वह बहाना जिस की बदौलत असीं अपनी जिंदगी दीआं उचाइयां तक पहुँच सकते हैं। डिगना मना नहीं, डिग सकते हैं जी, पर डिगन तो बाद उठना ते उठ के अपनी मंजिल ते पहुंचना इस चीज़ दी भी सानू एक आदत होनी चाहिए है। ते तीसरी गल शुरुआत, शुरुआत कदे भी किसी भी थां ते की जा सकती है, बस ओदा सिर्फ इको एक नुस्खा कह लो या इको एक इशारा कह लो या इको एक उस दिया सिम्टम कह लो, वह यही है कि आदत होनी चाहिए है। लो जी हुण भाई साहब वल्लों इशारा हो गया कहिंदे जी बस हुण तुसीं जिन्ना अज दा प्रोग्राम करना सी कर लिया क्योंकि कहिंदे आउण वाला टाइम जिहड़ा ना तेरे भाई दा

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड प्यारे जी, गुड इवनिंग दोस्तों। शाम दे 7:03 हो चुके ने, एफएम रेनबो ते शुरू हो चुका है प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। वैसे मेरे तो पहला जिन्ना बिपन ने जोर लगा के मेरी तारीफ या कीती हो, आहा लग रहा है जिवें बस मेरे हाथों 500 दा नोट फड़ के ते जो दे मुंह च आया वह बोली गया। खैर मजाक ते रोजी, शाम दे 7:43 हो चुके ने एंड एफएम रेनबो यानी कि 101.7 एफएम रेनबो ते फिल्मी दुनिया लैके हाजिर हो चुका है तुहाडा दोस्त मोहित रूबल। चलो जी, अज के इस सफर दे विच, अज दी इस फिल्मी दुनिया दे विच बहुत सारे सितारों नूं अज असी याद करांगे। सब तो पहला क्योंकि समा अज घट होएगा, क्योंकि बहुत अज दे खास सितारे ने जिन्हां बारे गल करनी बहुत जरूरी है। चलो जी, तुसी प्रोग्राम दे विच सब तो पहला जिसका आपां जिक्र करन जा रहे हैं वह अज मेहमानी शख्सियत है जीवन कला। जी हाँ, जीवन कला फिल्मी दुनिया विच उस समय कदम रखिया उन्होंने जदों हैलन, अरुणा ईरानी अते बिंदु वर्गियां कलाकारां दा दौर सी। जीवन कला नूं अक्सर नाच, क्लब डांस अते सहायक भूमिकावां लई चुने जांदा सीगा, यानी कि कह सकदे हां कि हमेशा उन्होंने एज ए गेस्ट परफॉर्मेंस, एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस या फिर एक जिहड़ा हुंदा ना फिल्म दा एक ऐसा गीत जिहदे विच कोई सैलिब्रिटी आके डांस कर

0: दादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे।
1: नहीं जी, सिर्फ जेड़ा छोरा गंगा किनारे वाला सिर्फ वही हलाल नहीं, या फिर सिर्फ ओनू ही नहीं, मैं कहना पूरी उस समय जड़ी भारतीय आवाम सी उन्हां ने खूब प्यार किया जीवन कला नू, क्योंकि बहुत सोहने अंदाज दे नाल जिन्ना भी किरदार इन्हां नू करन मिलदा सीगा वह बखूबी सोहना करते सके। सो जीवन कला जी की अज्ज बर्थ एनिवर्सरी है, क्योंकि उन्हां दा जन्म अज दे दिन यानी कि 29 तरीक नू जिहड़ा है हुंदा है, एंड 1944 दे विच, ठीक है जी। सो उन्होंने फिल्मी दुनिया में उस समय कदम रखे जिम्मे मैं तुम्हें दस दिता, तो जीवन कला नू कोई वड्डा राष्ट्री जा फिल्म अवार्ड तो नहीं मिलता, पर उन्होंने जी मौजूदगी है हमेशा फिल्मों के वक्री जरूर रहती है, एंड एक वक्रा जहा नाम है जो मैनू नहीं समझ आ रहा कि क्यों उन्होंने नाम इदा का सगा। कहा जाता कि इन्हों मिस्टर एक्स ऑफ बॉलीवुड कहा जाता सगा, मैं ये बारे काफ़ी ज़्यादा सर्च करने की कोशिश की है, लिखा है कि शी इज़ एन एक्ट्रेस नोन फॉर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। अच्छा फिल्म का नाम सीगा उदो, ओके, जिद उन्होंने काम किया मिस्टर एक्सन बॉम्बे एंड शबनम 1964 एंड रिपोर्टर राजू। अच्छा इन्होंने फिल्मों के उन्होंने बतौर मुख जड़ा कहे किरदार उन्होंने काम किया, सो क्या बात है। पर मैं हुणे तुहाडा जो गाना लगाया सीगा तो मैनू आप थोड़ी झलक चंगी तरह क्लीयर नहीं सी हो रही, तो मैं आप बहुत सारिया मूवीज़ इन्होंने सर्च की, तो फिर याद है क्योंकि यह सारिया मूवीज़ में कुछ कु मूवीज़ तो मैं देखिया से, जिमें अमर अकबर एंथनी मैं देखी सी, मुकद्दर का सिकंदर मैं वेखी सी, सीता और गीता भी देखी सी, यादव की बारात मैं नहीं वेखी, सो मैं सर्च नहीं किया, तो फिर याद है कि हाँ इदा के जो मैडम सके यानी कि इदा के एक्टर सी हाँ सके फिल्म के। सोलो जी इन्हों बारे आप क्योंकि बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां होरां भी अज सितारियां बारे करांगे, सो कहना दा फेमस गाना मैं दस दवां जिस गाने ते तुसीं सारे ने इन्हां नूं देखिया होया नचदे होए, ते इस कल नचदे नहीं होए उस गाने नूं अगर बहुत ज़्यादा मैं कह लवां कि एक माइलस्टोन बनाया बॉलीवुड दे विच, सो वह गाना फिल्म शोले दा महबूबा महबूबा।

क्या बात है जी, क्या बात है। सो तुसी अगर कुछ गाना सुन लिया तो तुहानू थोड़ा जा आइडिया हो गया होएगा कि गाना तां खूबसूरत है ही है, क्योंकि खूबसूरत आवाज़ दे जरिए तुसी गाना जिहड़ा है तुसी सुनिया, जो कि आवाज़ है यशुदास दी। ठीक है, फिलहाल असी गल कर रहे हैं गोहर कानपुरी जी दी, है ना। गोहर कानपुरी, अगर तुसी नाम तो थोड़ा जा, जिहड़े काफ़ी सारे जिहड़े राइटर हुंदे ने, वो हमेशा अपने ना ना अपने इलाके दा नाम जिहड़ा है वो जरूर लिख दिंदे, जिवें साहिर लुधियानवी, होर मैनू कोई याद, हाँ शिव बटालवी, है ना। सो इदां ही एक ऐसी ही इंडस्ट्री दे विच जो कि बहुत सोहणे गाने उन्होंने लिखे ने, बहुत सोहणे गीत उन्होंने बॉलीवुड दित्ते ने, जिन्हां दा विच एक नाम की आंदा है गोहर कानपुरी। गोहर कानपुरी की जेकर असी गल की जाए तो उन्होंने जन्म 1 अक्तूबर 1932 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के होया, तो असल नाम जिहड़ा है बड़े घट लोग जानते हैं गोहर, पर जो कानपुरी नाम जुड़िया तो कानपुरी तकल्लुस ने उन्होंने वक्री पछाण जी है दिती है। सो गोहर जिहड़े ने बचपन तो ही उन्होंने शायरी ते उर्दू अदब नाल बेहद प्यार सी, ते स्कूल के दिनों के ही गज़लां ते नज़मां लिखण लग पे, ते मुशायरे विच जदों उन्हां नूं हौसला अफजाई मिली ते उन्हां दे मन विच भी एक सुपना आया कि मैं भी अगे वध के फिल्मां दे विच अपने आप नूं देख सकदा वां, ते मुंबई जा के फिल्मां दा पार्ट जिहड़ा है बन सकदा वां। सो बड़े खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे ने, ते जिन्हां नूं आवाज़ बॉलीवुड दे चंगे धुरंधर, चाहे कुमार सानू होण, अमित कुमार होण, अजीज साहब होण, या फिर होर भी बहुत सारे सिंगरस होण, उन्हां सारिआं ने अपनी आवाज़ जिहड़ी है इन्हां दे गीतां नूं दित्ती। सो आओ उन्हां दे विच्चों ही एक ऐसा गीत जिहड़ा कि शायद आपां सारिआं ने सुणिआ होया, इंजॉय कीता है, थोड़ा जिहा सुणदे हां, उस तों बाद होर गल करांगे आपां गोहर कल्याणपुरी बारे।

0: क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ?
1: पापू, तुम आ गए पापू? बापू?
0: मुन्नी, देख मैं तेरे लिए गुड़िया लाया।
1: गुड़िया? बापू, करीमन आपा बड़ी अच्छी बातें सुनाती हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, ईमान के रास्ते पर चलना चाहिए।
0: ईमान? ईमान क्या होता है आपा?

जी हाँ, असी गल कर रहे हैं एक्ट्रेस कॉमेडियन मल्टी पर्सनैलिटी वाले अपने अज के खास परसन उपासना सिंह जी की। सो 1977 के जिहड़ी फिल्म आती है जिसका मैं गाना प्ले किया जुदाई, तो उन्होंने करियर का ना एक टर्निंग पॉइंट सेगा, क्योंकि इस फिल्म तो बाद, क्योंकि इस फिल्म के ना लोगों ने उन्होंने कॉमेडी जी है बड़ी ज़्यादा पसंद की, तो एक्टिंग पसंद की, फिर दर्शकों नूं जदों इन्नी ज़्यादा चीज़ पसंद आई तो बहुत सारे डायरेक्टर्स ने अलग अलग फिल्मों के इन्हों का चाहे छोटा जहा कैमियो होवे, छोटे जे इन्हों जोक्स हो जरूर रखने शुरू कर दते। पर इन्हों उस तो भी ज़्यादा होर प्यार मिले जदों ए टीवी पर भी आ गए। जी हाँ, टीवी पर भी बहुत सारे नाटकों के चाहे थोड़ा जहा थोड़ा थोड़ा एक दा शायद इन्होंने विलन का रोल भी कितने कितने किया एंड बट फिर भी एक कॉमेडी का रोल जड़ा है लोग ज़्यादा पसंद करते से। फिर एक शो आया कपिल शर्मा का कॉमेडी शो, वो जदों कपिल की भूआ बन के सामने आए फिर तो इन्हों की पछाण सिर्फ इंडिया तक नहीं रह गई, दुनिया भर के जिहड़े ने इन्हों के फॉलोअर्स कह लो या फिर इन्हों पसंद करने वाले जिहड़े फैन सीगे वो बन गए। सो चंगा नाम जिहड़ा है उन्होंने अपना बनाया तीनों ही फॉरमैट्स दे विच, चाहे फिल्मों की गल की जाए, चाहे टीवी ते नाटकां दी गल की जाए, या टीवी दे रियलिटी शोज़ की गल की जाए, हर थां उपासना सिंह ने अपनी मेहनत दे नाल जिहड़ा झंडा है वो गड्डिया।

नमस्कार, रात दे 8 बज चुके ने ते एफएम रेनबो ते समा हो चुके हुण एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे साल दे दूजे रक्षा सम्मान समारोह विच बहादुरी पुरस्कार प्रदान किते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सैशलेस का दौरा काफ़ी सार्थक रहा, इस नाल भारत सैशलेस की दोस्ती मजबूत होगी। हरियाणा ते राजस्थान सरकार ने नवी दिल्ली विच गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी यमुना जल प्रोजेक्ट बारे एक समझौते उत्ते दस्तखत किए। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब सरकार नूं श्री अकाल तख्त साहब वालों बेदबी विरोधी कानून संबंधी उठाए गए सारे इतराजा का एक महीने के अंदर अंदर हल करन दे निर्देश दिते ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भगत कबीर जी का प्रकाश पुरब श्रद्धा के सत्कार के नाल मनाया गया, सूबा पद्धरी समागम जलंधर च करवाया जा रहा। 3 जुलाई तो शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा लई सारियां तैयारियां मुकम्मल। मौसम विभाग वालों अज ते कल पंजाब विच कुछ थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश की संभावना, जबकि 1 जुलाई तो पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भारी बारिश अते तापमान विच गिरावट बारे अलर्ट जारी किया। भारतीय बैडमिंटन खिडारी किताबी श्रीकांत ने US ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट विच मर्दां दे सिंगल्स दे फाइनल विच चांदी दा तमगा जितया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजलस 2028 ओलंपिक खेडां लई क्वालीफाई किया। ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਜ਼।

जी हाँ दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद। रात दे 8:03 हो चुके ने एंड FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी, जिसका नाम है जी मसाला मिक्स। सो ऐसिया मिक्स मिक्स जिया गल्ला मैं थोड़े नाल लैके थोड़े कोल लैके आया वा, जो कि तुसी इंजॉय करोगे एंड बहुत सारी चीज़ा, चाहे वह बॉलीवुड गॉसिप है, चाहे वह डायलॉग्स ने, बहुत सारी चीज़ा मैं लैके आया। पर मैं ना जस्ट दो तीन जिहड़ियां फोन कॉल्स ने वह लवागा, विच फोन कॉल्स लवागा, बट वो फोन कॉल सिर्फ सिर्फ मैनू थोड़ा तुसी याद दसन की कोशिश करनी है कि बड़ा चंगा भला आप ना सैटरडे संडे इंजॉय कर रहे होंगे तो मंडी क्यों आ जाता है, मंडी जड़ा है वो मंडी मन की गल क्यों नहीं करता, यानी कि मन दिया सारिया वो गल्ला जिहड़ियां असीं चाहुंदे कि सिर्फ इंजॉय करिए, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, सारे प्रोजेक्ट सारिया मंगा नूं पिछे छड़दा होया सोमवार बिल्कुल टाइम पर आ जाता है। तो तुहाड़ी मोटिवेशन की करती है, तुसी किवें मोटिवेट रहिंदे हो, या फिर कोई भी है ना दसना है तुसी मैनूं कि मंडे जदों आ जांदा है तो किवें तुहाडे एक्सप्रैशन किहो जिहे हुंदे ने, थोड़ी जिही गल करांगे। बाकी बहुत सारियां इनफॉर्मेशन मैं थोड़े लिए लैके आया, पर सब तों पहला गाना करदे हां, इंजॉय।

हाँ जी, एक और फिर स्वागत है जी प्रोग्राम मसाला मिक्स विच। एंड इस प्रोग्राम दा हुण एक वैसा एक समा आ चुका है जिथे आपां हुण जिहड़ियां कह लो कि आखिरी एक खबर जिहड़ी मैं तुहानूं शेयर कर लगा, एक हटके जी खबर। सो होया कि यह एक AI वकील ने एक इंसानी वकील नूं हरा दिता ते 8.79 लाख का केस जिहड़ा है जित लिया। जी हाँ, इदां पहली वारी होया कि एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं जो जो गल्लां पुछियां, जिदा जिदा उहनूं गल्लां पुछियां, ते उहने अदालत दे विच वी इदां ही प्रूफ कर दिता। होया कि ब्रिटेन दे विच एक AI लीगल चैटबोट ने इंसानी वकील नूं मात दे दित्ती ते करीब 7,000 pounds जो कि इंडियन दे विच 8.79 लाख बंदे है हो गया। सो होया कि गारफील्ड AI नाम का एक लीगल चैटबोट है। मैं दस दवा कि चैटबोट की हुंदा है। चैटबोट यानी कि एक कंपनी वालों एक चंगा डाटाबेस तैयार करने तो बाद एक ना बोट सिस्टम बन जाता है। लैट सपोज तुसी ऑल इंडिया रेडियो का एक ऐसा बोट बन जाए जिथे तुसी ना जिथे सारे ही बॉलीवुड के किन्ने ही कलाकार जिहड़े ने, चाहे वह राइटर्स ने, चाहे वह स्टोरी राइटर ने, चाहे वह डायरैक्टर ने, उन्होंने बारे इनफोरमेशन जी इकट्ठी की हुई है। तुसी बस ऑल इंडिया रेडियो की वैबसाइट पर जाओगे तो बस सर्च करोगे कि हाँ जी यशराज जी बारे मैं जानना चाहना, तो तुहानू यशराज जी बारे सारी दी सारी जानकारी जी है बिल्कुल सटीक चंकी लीगल ऑथेंटिक जानकारी तुहानू सामने मिल जाएगी। सो इदा चैटबोट काम करता है। पर इदा ही जिहड़ा उन्हां दा एक लॉ फर्म का चैटबोट सीगा उन्हें जदों किसी केस दे विच जदों उन्हें आपनू हायर किया गया तो उन्हें जो जवाबदेही देनी सीगी तो इंसानी वकील को वो फैक्ट्स तो चीज़ा नहीं आ पईआं। हालांकि मेरा पर्सनल मनना है, तुसीं भी शायद इस गल

बिल्कुल अग्री करोगे कि शायद इंसानी वकील भी जीत जाता है, क्योंकि असी थोड़े लोग ना कैलकुलेट करते हैं, असी लोग थोड़ा जा ना स्टडी जी है वो असी कागजा तो देख के कि पुराने केस विच एदा होया सीगा, पुराने केस विच माननीय जज साहब ने एदा अपना फैसला सुनाया सीगा, तो वो ग्राउंड से मैं इस चीज़ का मतलब कह लो कि मैं आरोप लगाना वा या फिर अपनी आवाज़ उठाना वा, तो मैं यह चीज़ चाहना वा जिथे ए आई दे कोल की है, ए आई दे कोल हर चीज़ तो लॉजिकली टेक्निकली वो को सब ए आई के चिपसैट के सब कुछ मौजूद है, और उही केस चाहे जो सामने वाले वकील दे कोल है वो कोल ऑनलाइन वो कोल दिमाग दे विच विद इन फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड वो चीज़ मौजूद होगी, तो शायद वो एक टाइमिंग दे सिर दे उत्ते या फिर एक स्पीड कह लो या फिर एक बहुत सारे ऐसे केसिस की जी उन्होंने एग्जाम्पल दे दी होगी, तो जो वकील जो ए आई वकील है वो जित गया, तो इनू मैं नहीं मनागा कि आ एक रोबोट की जित है, मैं इनू एक इंसान की ही जित मनागा क्योंकि उसनू भी एक इंसान नहीं बनाया, बट हाँ वो जो अगेंस्ट जो दूसरा वकील हारिया वो जरूर निराश जड़े ने वो होए होंगे, बट इट्स ओके है ना, थोड़ा जहा चिल मारो एंड आपां मैं चाहुंदा कि यार इत्थे थोड़ा होर लोग जड़े ने डिस्कशन करन एंड इत्थे एक ऐसा एक रिजल्ट निकले कि इंसान खुश होन रोबोट नहीं। चलो जी फिलहाल तुसी सारे खुश होवोगे क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत गीत मन अटकया मैं प्ले करन जा रहा हैं, एंड उस तो बाद तुहाडा मन अटकेगा नहीं, मन तुहाडा ज़्यादा खुश होवेगा क्योंकि ठीक रात दे 9 बजे जिहड़ा अगला प्रोग्राम है तुसी इंजॉय करोगे अपने दोस्त मोहित रुबल दे नाल जिसका नाम है जी दिल चाहता है। सो जिहड़े दोस्त पहली बार प्रोग्राम दे नाल जुड़े ने वो की कर सकते हैं, प्रोग्राम दे विच शामिल हो सकते हैं, की करना बस वट्सएप ते सानू मैसेज भेजो 9855 10 10 27।

नमस्कार, रात दे 9 बज चुके ने एफ एम रेनबो ते समा हो चुके हुण एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस दा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सम्मान समारोह विच बहादुरी पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सैशलेस का दौरा काफ़ी सार्थक रहा है, इस नाल भारत सैशलेस की दोस्ती मजबूत होगी। हरियाणा ते राजस्थान सरकार ने अज नवी दिल्ली विच गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी विच यमुना जल प्रोजेक्ट बारे एक समझौते उत्ते दस्तखत किए ने। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदारी ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब सरकार नूं श्री अकाल तख्त साहब वालों बेअदबी विरोधी कानून संबंधी उठाए गए सारे इतराज़ा का एक महीने के अंदर अंदर हल करने के निर्देश दिए ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भगत कबीर जी का प्रकाश पुरब श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया गया। सूबा पदरी समागम जलंधर च करवाया गया।

हेलो जी, वंस अगेन वेलकम जी प्रोग्राम दिल चाहता है। प्रोग्राम दिल चाहता है में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोहित रुबल। और इस प्रोग्राम को आप सुनेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन आकाशवाणी के साथ, एफएम रेनबो के साथ, जलंधर के साथ। मैके जी की हाल चाल ने, ठीक ठाक जो की पकरण डे ही गए, रात दे 9:03 हो चुके ने। प्रोग्राम दिल चाहता है जिन्होंने पहली बार है ना, पहली बार कहीं गड्डी जा रहे होने की रेडियो ट्यूनिंग किया होगा, कहते हो बड़ी सोहनी आवाज आ रही है। मैं दस दवा इस प्रोग्राम से तुम भी पार्टीसपेट कर सकते हो। तुम अपने परिवार ने घूम रहे हो, दोस्तों ने घूम रहे हो, जिदा भी घूम रहे हो, घूम फिर रहे हो। ओके, स्पीड ध्यान। सो तुम की करना है, तुम सू मैसेज भेज सकते हो। मैसेज तुम सू सॉरी व्हाट्सअप नंबर 9855101023 भेज सकते हो। तो किसी भी हिंदी या पंजाबी फिल्मी गीत की फरमाइश तुसी कर सकते हो, मैं थोड़ी फरमाइश जरूर पूरी करांगा। हुकम मेरे आका। सो बहुत सारे दोस्त जिहड़े ने मैसेज भेज चुके ने, आओ इन्हां दे मैसेजेस नूं वारो वार पढ़ते हैं एंड इन्हां दी फरमाइश जिहड़ी है पूरी करते हैं। बई किसे ने सानू 7:15 मैसेज भेजता, अरे 9 बजे शुरू होता है मैसेज, हैं मैसेज मेरा प्रोग्राम 9 बजे शुरू होता है। ये मैसेज हमें किसी ने 7:15 भेज दिया है, लिखा है दिल चाहता है, दिल चाहता है, और ये दिल चाहता है मनजीत का, एकमजीत का खडूर तो, खडूर साहब तो। ठीक है जी, बहुत बहुत चंगी गल है जी, ताडा दिल चाहता है। तो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा जी, होली चौंक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म चोरी चोरी, गीत अजय सनम मधुर चांदनी में, आजा सनम मधुर चांदनी में। अच्छा ये तो नहीं गीत, अगर ये है तो हम ज़रूर प्ले करेंगे, हम ये गाना ज़रूर ज़रूर ज़रूर ज़रूर, बोलते बोलते गाना मिल गया। ओके सो नहीं मिला, अरे बाबू कौन सा गाना, आजा सनम मिल गया। ओके ये फरमाइश हमें भेजी है, ये बोल दिया है दीपांशु खोरवाल। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे हमें फरमाइश आई है, लिखा है नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन, रेनबो जलंधर की मोहब्बतों को सलाम, जिससे श्रोताओं में खुशी की लहर है। और ये फरमाइश भेजी हमें सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, ये चाहते हैं फिल्म अमानत का गीत तेरी जवानी तपता महीना, और इसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। अरे वाह वाह वाह। अगला मैसेज है, किसी बात पे मैं किसी से खफा हूँ, मैं हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। ओके जी अगला मैसेज, सत श्री अकाल जी मोहित वीर जी, मैं कहना सत श्री अकाल जी, स्वरण सिंह पिंड दोलेवाला जिला मोगा तो, गीत बहुत खूबसूरत हो, फिल्म खूबसूरत। अरे वाह वाह। अगे मैसेज आया साढ़े को, सो प्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, गीत तोता मीना की कहानी, और ये फरमाइश भेजिए नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, वेद मिड्डाल का मिड्डाल से। और अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे प्रियजन, हमारे दोस्त साहिल महेने, और ये कहते हैं कि हम ना अपने परिवार के साथ ना घूम फिर रहे हैं, आप हमारा नाम भी ले लीजिए। ठीक है जी।

ठीक है जी, ओके जी, सारा महे परिवार आपको भी शुभ रात्रि अभी कह दें? नहीं, अभी तो चलो रात पड़ी है, हाँ मतलब शुभ इवनिंग जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं फिलहाल जी। गाना सुनते हैं और उस गाने के बाद और दोस्तों के मैसेज जो हैं वो लेते हैं।

क्या बात है, खूबसूरत गीत आपने एंजॉय किया और मुझे भी एंजॉय कराया। थैंक यू सो मच आप सभी का। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे मैसेज आया है, प्रोग्राम दिल जाता है को प्यार भरी नमस्कार। मूवी लैला मजनू गीत तेरे दर पे आया हूँ, गांव नथाना से और पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता एनी सॉन्ग में शामिल कर दीजिए। ओके। अगला मैसेज है, राम राम जी। कोई भी गीत लाला बद वैसे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। ओके जी। अगला मैसेज, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और मूवी प्यासा सावन ट्रैक मेघारे मेघारे। ओके। अगला मैसेज, नमस्कार। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर गीत रोते हुए आते हैं सब, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, माही वे। अगला मैसेज, नमस्कार। वेडिंग खेड़ा पंजाब तो, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती रोड़ा। कोई भी गीत सुना दो जी, कोई भी गीत ला दो। अगला मैसेज हमें आया है, दिल चाहता है सब प्रेम नमस्कार, आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, मूवी गोरा और काला सॉन्ग धीरे धीरे भूल को ही सुनना ले। ओके। और ये फरमाइश भेजी है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। माई रेडियो माई लाइफ। ओके जी। अगला मैसेज है, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। आदरणीय प्रसारक जी, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत में शामिल करें, आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहराज हाँ, आज़ाद नगर, लक्षर, हरिद्वार से। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज यह है, कार्यक्रम दिल चाहता है प्यार भरा नमस्कार जी। और दिल है जल है तो जीवन है, फिल्म सन्यासी गीत, दिल में दर्द रहता मुझे भूख नहीं लगती। अरे इलाज करवाइए बाबू, क्या बात कर रहे हैं तुम। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गावे मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी। अगर गीत नहीं चल सकता, किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल कर लें। अरे हमने कर लिया, आपने कहा हमने कर लिया। अगला मैसेज, सप्रे नमस्कार, फिल्म दिल और बोल है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। ठीक है जी। और ये हमें

फरमाइश भेजी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। ओके जी, सो आगे ना हमें एक और फरमाइश आई है। ये फरमाइश है पूरे के पूरे परिवार की, ठीक है, और ये शायद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। ओके, और ये लिखा है, मैसेज आया है अमृत, अमृत है और नीचे लिखा है साली साहिबा। अच्छा जी, अच्छा, पूरे परिवार के साथ लिखा है अमृत साली साहिबा और उनकी धर्मपत्नी नीलम जी और उनकी मम्मी जी सीमा जी और उनके पिताजी कविंदर जी और खुद हैं साहिल जी। अरे वाह, पूरा परिवार सुन रहा है, पूरा परिवार कहीं जा रहा है, ये ठीक है, जाइए इंजॉय कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और साहिल जी लिख रहे हैं कि प्लीज़ गाना सुना दें मूवी कॉकटेल का, तेरा नाम जपदी फिरा। ये तो आपको आपकी बीवी को गाना चाहिए, है ना। Well, thank you so much for listening program and sending your फरमाइश, thank you so much, it means a lot. तो दोस्तों, तुसी भी प्रोग्राम अगर इंजॉय कर रहे हो, तुसी भी अपनी फरमाइश भेज सकते हो। साडा व्हाट्सएप नंबर है 9855 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9 8 55 10 10 2 9

जवाब गायिका आशा भोंसले और किशोर कुमार बोल आजा मेरी जानू, ये जून का महीना, ये कैसे कैसे गीत हैं रे। अगला मैसेज है सुखवीर सिंह, कमलप्रीत कौर, रोशन प्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर, लिखे एनी सॉन्ग। ओके जी। अगला मैसेज कनेरा मल्ला पटियाला तो बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक, किरण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता, फिल्म अमानत, गीत तेरी जवानी, तपता महीना। अरे सारे यही फरमाइश भेजी आ रहे हैं। दिल चाहता है प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। नमस्ते जी, नमस्ते। राम कुमार चौहान, सरोज भव्या चौहान, निशा चौहान, गांव रमसारा, जाखड़ा तहसील, सूरतगढ़ जिला, गंगानगर राजस्थान से, सोंग राजा हिंदुस्तानी, पल देसी, पल देसी। अच्छा पल पल लिखा है, अरे परदेसी है। अगला मैसेज प्रस्तुत करता शशि कौल, खड़कम दिल चाहता है फिल्म सागर, स्वर आर डी बर्मन और किशोर दा के, गीत चेहरा होया। चेहरा हो या चांद छुपा है, जुल्फ़ें चांद है क्या, गाना ढूंढो। ये मिल गया, अरे बहुत खूबसूरत गाना है, पहले ये गाना ही एंजॉय करते हैं। इस गाने के बाद मिलेंगे आपको फिर से दोस्तों, प्रोग्राम दिल चाहता है मैं आपका इंतजार करूंगा। आप हमें मैसेज भेजिए 9855101027।

8551010027. And yes, I'm a genie. Yeah, I'm a genie, and I will definitely fulfill your wish. So let's see, किसने अभी और मैसेज भेजा है? अगला मैसेज हमें भेजा है, लिखा है, दिल चाहता है पिंड मूलियां वाली जिला फाजिल का प्यार परी नमस्कार, विनोद काठपाल, प्रवीण काठपाल, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, जनरल काठपाल, कोई भी पंजाबी की। ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज आया, दिल चाहता है फिल्म भीगी पलकें, जन्म जन्म का साथ, प्यार भरे नमस्कार, हनुमानगढ़ टाउन, रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। और लिखा है, शुक्रिया जी, आपको भी मेरा शुक्रिया जी। हमारी तरह हम शुक्रिया रखते नहीं, सभी को शुक्रिया बांट देते हम। अगला मैसेज आया जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी टिकेस्ट्रो, पल टिकेस्ट्रो, विली टिकेस्ट्रो, क्या मौसम आया है, कितने आक्रमण, लता जी किशोर, 1975 किशोर। ओके जी, थैंक यू जी। और अगला मैसेज हमें आया है, लिखा है, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, फिल्म ही रांझा, बोल मिलना तुमसे हम घबराएं। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है, लिखा है, नमस्ते फ्रॉम सुमन हीर कामिया तनम हरविंदर युवराज यशिका पंजाब दसूहा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर, सॉन्ग लेके पहला पहला प्यार, फिल्म आह बोल जाने ना नजर पहचान जिगर। यार ये गाना लगा ही देते हैं, लेके पहला पहला प्यार, बहुत सदियों के बाद ये गाना हमारे कानों तक तो पहुंचा है। आई विश मुझे ये मिल जाए, मतलब ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेके पहला पहला प्यार, और हमें नहीं मिला ये, वाओ। ओके, एक और ट्राई करते हैं। ओके, नहीं मिला, चलिए ठीक है, अगला गाना ढूंढते हैं। अगली फिल्म है आह जाने ना नजर पहचाने जिगर, उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। अगर मैं सी पराया धन, आओ झूमे गाएं मिलके, धूम मचाएं भोपालगढ़ राजस्थान से, और धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार। ठीक है जी, अगला मैसेज, खुशनुमा गीत, गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली से। और अगला हमें किसी ने मैसेज भेज दिया है कि गाना लगा दो ओ माय माशूका। अरे ये गाना फिल्म अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई है, गाना तो हमारे पास नहीं मिलेगा रे। सो अगला मैसेज आया, पिंड हीरा वाली जिला फाजिलका दे पक्के स्रोता सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गुदारा, सत श्रीकाल जी, प्रोग्राम दिल चत्तर लाइव सुन रहे हैं, रात नू सारे काम निपटा के इस प्रोग्राम नाल जुड़ जाने हैं। सो कोई भी गीत सुना दो। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं कहना गीत कुछ अच्छा सा चला ही देते हैं। ओके, फिल्म कौन सी लिखी, फिल्म इज्जत, ये भाई साहब रोज ही इस गाने की फरमाइश कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं पूरी करेंगे, पर भेजने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रनाजल राय। ओके ओके ओके ओके, बहुत सारे दोस्त बहुत दूर दूर से मैसेज भेजते हैं हमें। अगला मैसेज आया, कोई भी गीत सुनाए, मुताला महाराष्ट्र से, विजय सरालकर, रतनमाला, ओम कुमार और आरती सुलकर। अगर कोई भी गीत है तो मैं अपनी मर्जी का लगा लेता हूँ, और मैं सुनना चाहता हूँ रॉक स्टार मूवी का कुन फाया कुन। ठीक है जी, ये रहा गीत।

लो जी, इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है जी प्रोग्राम दिल चाहता है। और अगर आपका भी दिल चाहता है एक अच्छा सा खूबसूरत सा गीत सुनने का, तो आप हमें लिखकर भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9।

क्या बात है। एक बार फिर खूबसूरत गीतों बाद फिर स्वागत है प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच। समा हो चुका रात दे 9:41 45 सेकंड्स हो चुके ने। प्रोग्राम तो इंजॉय कर रहे हो अपने दोस्त मोहित दे नाल। ते अगे वधदे आ, अगे आपां को बहुत सारे मैसेज आ गए ने। लगता आपां नूं हुण मैसेज जल्दी जल्दी लैने पैणे ने। अगला आपां को मैसेज है पिंड जट्टांवाली जग्गा हंस कोई भी गीत लिख रहे ने। थैंक यू जी। अगला बसी गांव घमंडिया सूरतगढ़ जगदीश ढुकिया परमीला ज्योति सरिता सचिन अमना अमन्ना अमना तमन्ना साइना विष्णु ढुकिया देहती ईवा धरनिया फिल्म सोतन की बेटी आवाज़ लता मंगेशकर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया है जी, लिखा है पिंड डाकखाना निमनाबाद नेड़ो सफेदो मंडी जिला जिंद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत कौर लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर प्रोग्राम दिल चाहता है पेश करने वाले आरजे नूं प्यार भरा सत श्रीकाल ते सत्कार। किसी भी गीत शामिल करो जी, धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगला मैसेज आया जी, फिल्म मनमोजी सिंह जरूरत है जरूरत है श्रीमती की कलावती की संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल सानी पिंगा वाला चौंक गुराया जलंधर तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया, दिल चाहता है कार्यक्रम टेस्ट करने का जो पेश करने का जो अंदाज़ है आपका वो बहुत लाजवाब है। शुक्रिया शुक्रिया। पंजाबी हिंदी रोमांटिक विचार यानी रोमांटिक बातें सुनकर बहुत आनंद आता है। इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ भोजन भी जब करते हैं यानी खाना खाते हैं तो खाना भी टेस्टी लगता है। सर यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है जब आप मैसेज पढ़ते हैं और आपके जो अंदाज़ है लाजवाब है, अरे मज़ा ही आ जाता है। ऐसे प्रोग्राम सिर्फ एफ एम रेडियो तंत्र पर सुनने को मिलता है। थैंक यू सो मच, इट्स मीन्स अलॉट। राजकुमार रिवार्ड चंद्रकला रिवॉर्ड्स साधुल शहर राजस्थान से। थैंक यू सो मच। आगे पहुंचते हैं, आगे हमें मैसेज आया है करणवीर हाउस पुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से। नमस्कार जी, प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर कौर करण दपिंदर वतिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन एंड अभिजोत किसी भी गीत में शामिल किया जाए। थैंक यू। अगला मैसेज आया है हमें, दिल चाहता है गाँव फ्रांसिस जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी प्रमोद कुमार डुड्डी पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। ठीक है जी। अगला मैसेज आया आदरणीय प्रसारक महोदय जी प्यार भाई नमस्कार, फिल्म हमराज स्वर महेंद्र कपूर बोल नीम गगन के तले नरेश्वर नगर नवरेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर निर्मला नहावकर विशाल नहावकर मलकापुर से नारायण नारायण इंगले सोपान ताइडे आशीष मोहरकर धन्यवाद। मैसेज आया, सत श्रीकाल सारे पंजाबियों नूं, जरा सा झूम लूँ मैं गीत सुना दियो जी फिल्म दिल दुवाले दुहनिया ले जाएंगे। अरे क्या बात है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना अरे ना अरे ना, है ना। तो ये गाना अभी प्ले करेंगे हम और ये फरमाइश में भेजी है काला कंबोज रजनी बाला कंबोज सीरत कंबोज जपजी कंबोज से गुरफतेह सिंह कंबोज पिंड मोड़ के हिथाड़ जिला फिरोजपुर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और हमें किसी का मैसेज आया है, फरहान शेख हमें मैसेज भेज रहे हैं, हाय आई एम फ्रॉम हरियाणा। अरे वाह वाह जी, थैंक यू जी थैंक यू जी, इतने दूर से लोग हमें सुन रहे हैं लाइव देख रहे हैं हमें। और आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज आया है हमें सुखदेव सिंह नरेंद्र कौर सनी मुनील काका बिट्टू लाडी मास्टर मोहन जगनगर चंद्र तो फिलहाल बहुत मैसेज पढ़ ले मैं अगले 15 मिनट से शायद बाकी तो पूरी नहीं कर पाऊँगा। फिलहाल चलो गाना इंजॉय करते हैं, गाने तो बाद वापस आने हैं।

लो जी, एक बार फिर बड़े ही एनर्जेटिक खूबसूरत गीतों बाद वापसी होते हुए प्रोग्राम दिल चाहता है, प्रोग्राम दिल चाहता है मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित रुबल और समय हो चुका है रात की 9 बज के 48 मिनट हो गए जी। ओके जी, सो बहुत दोस्तों के मैसेज आ चुके हैं। चलो जी, लो जी हूँ जी इन्नी मैसेज आ चुके हैं, तो चलो फिर सारे ले लेने मैसेज। अगर मैसेज आया कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना फिल्म आरजू, थैंक यू जी। अगला मैसेज आया ऐसा नू प्रोग्राम दिल चाहता है अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर, तो कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर मान, हरविंदर मान, कोई भी फिल्मी गीत, ठीक है जी, थैंक यू जी। अगला मैसेज, वीर जी नमस्कार, फिल्म आपके हैं कौन सॉन्ग पहला पहला प्यार है, प्रक्षित रेहान, एकता गुड्डू, अनिता, विकास कश्यप, बॉबी राजपूत, कस्तूरबा नगर, जलंधर कैंट, तो फिल्म रेनबो दिल से दिल तक, ठीक है जी। अगला एक और मैसेज आया है सानू, मैसेज आया सानू कार्यक्रम दिल चाहता है फिल्म नगीना स्वर लता गीत, मैं तेरे दुश्मन दुश्मन तू मेरा, अरे नहीं कौन दुश्मन नहीं, यहाँ पे हम सभी दोस्त हैं, सब यहाँ भाई बहन हैं। अगला मैसेज आया है रिंगन छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, ठीक है जी। अगला मैसेज, पिया पिया पिया मुरा जिया पुकारे फिल्म बाप रे बाप, आवाज रशा आशा भोंसले और किशोर कुमार, पवन लिम्बा अमरपुरा फाजिल का, तो मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है जी। अगला मैसेज, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मेघा भाटिया, कोई भी गीत सुनवा दीजिए प्लीज, ठीक है जी। अगला मैसेज, आदरणीय नमस्कार, कहाँ पहुँच के मैसेज आपका, इतने मैसेज भेज देते हो, प्यार भर नमस्कार, रामगंज खड़वा मध्य प्रदेश से, अरे वाह वाह वाह वाह, एमपी वाले, विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु, बाबू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू, अरे बहुत बच्चा लोग खरे। अगर मैसेज आते हैं मेजबान जी, नमस्कार जी, किसी भी गीत में शामिल करें, थैंक्स जी। आदर्श नगर मलोड़ पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज, अरे मैसेज खत्म नहीं हो रहे आज। अगला मैसेज, दादा बाबू रोड गृहिण झारखंड से एम डी यासीन अनजान, साइमन आवाज, हसन आवाज, बाबू अहद, मिश्रा नाज और बहुत सारे दोस्त साथ में, थैंक यू जी। अगला मैसेज, प्रोग्राम दिल चाहता है आदरणीय जी को प्यार भर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होती है आपकी, बहुत मज़ा आ जाता है, बहुत धन्यवाद। फिल्म सुहाग और गीत के बोल, तेरी रब ने बना दी चूड़ी, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित गुशी गोस्वामी, ठीक है, थैंक यू। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गाने के बोल नहीं चलेगा। आकाशवाणी जलंधर रेनबो प्रोग्राम प्रसारक जी नमस्ते, फिल्म सबक बुलडाना वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और शलोक कुमार बुलडाना इस्लामापुर महाराष्ट्र से, ओके जी। अगला जो मैसेज आया है हमें, दीपाली और शलोक कुमार बुलडाना इस्लामापुर महाराष्ट्र से, सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदकर, ओके जी, ठीक है जी। बहुत सारे दोस्त जिहड़े ने मैसेज सानू भेज रहे ने, एंड आपां फिर एक होर मैसेज पढ़ लेने हैं। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशबद सिंह, राहुल, फिल्म याराना बोले भोले यार को मना दे, ओके। अगला मैसेज, जी आर पोलतेपुरा, पोल परिवार, सराबा नगर, जंदर

तो जी कुल फिर स्वागत है प्रोग्राम दिल चाहता है में। ऐसा है कि समर आ गया है सिर्फ 5.5 मिनट। बाबूजी बहुत मैसी पढ़ना पड़ेगा। सो आ जाइए हमारे साथ, इस किश्ती में सवार हो जाइए, प्यार की किश्ती में। अगला मैसेज सत श्रीकाल सोंग सुन साहिब सुन रहे हैं जी। अगला मैसेज पिंड झंझेड़ी जिला तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली निशा शाहीन यासमीन अरमान मलिक वालों सारे काश्मीर परिवार को प्यार भरी सत श्रीकाल। तो ठीक है जी, अगला मैसेज थैंक्स ओके। अगला मैसेज गाने के बोल, ये हमें मैसेज भेजा है और सुनम मधुर चांदरी में हम फिल्म चोर चोरी आवाज़ मन्ना डे और रतम गेशकर मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से। ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दत्ता सिंह शेखावत संगीता कुंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत, थैंक यू जी। अगला मैसेज बहुत लंबे मैसेज है दोस्तों। अगला मैसेज आज की पंछी और ये मैसेज भेजा है कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम निपी शाहीन ओके। अगला मैसेज आया है सूरज रेडियो श्रोता संघ सहसपुर लोहरा दनिया खर्द, कहाँ दूर से मैसेज भेजा है गुनी राम राजपूत संतोषी ओके, थैंक यू जी। अगला मैसेज मोहब्बत जिंदाबाद, बहुत लंबा मैसेज, मैं आज लास्ट दो मैसेज रह गए ये। अगला मैसेज कबीर रेडियो श्रोता संघ ढोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तुमरिया अजय देव तुमरिया तुषार देव डोली बेबी पूजा तुमरिया, थैंक यू जी। अगला मैसेज आया है हमें जी कविता चोपड़ा पप्पू चोपड़ा सिल्वर कुंज लुधियाना से। और ये सेकंड लास्ट मैसेज आया है गांव हिपर सोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उमान शेख फौजी सायरा बानू। और ये अगला मैसेज आया है जलंधर से और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं पूरा का पूरा परिवार लगता है यहाँ पे प्रोग्राम को सुन रहा है। बड़े भाई साहब सुरेंद्र जी हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी अनु जी और उनके छोटे भाई साहब नरेश जी, उनकी धर्मपत्नी निशा जी और साथ में कितने सारे नन्ने मुन्ने। शुरुआत होती है गरिमा जी से, उसके बाद गरीशा जी, उसके बाद लविशा जी, उसके बाद नैनुपा, ये कौन सा नाम हुआ नैनुपा, ओके नैनुपा, और उसके बाद में भाव्या, ठीक है जी। और ये सुनना चाहते हैं तारे जमीन का बम बम बोले, ठीक है जी। प्रोग्राम का आखिरी गीत और आप एंजॉय करेंगे बम बम बोले मेरे साथ प्रोग्राम में, थैंक यू।

समुंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती है। समुंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हम अहले शहर की ख्वाहिश की मिलजुल कर रहे लेकिन, हम अहले शहर की ख्वाहिश की मिलजुल कर रहे लेकिन, अमीरे शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। एक खूबसूरत जो गज़ल है ये है खुशबीर सिंह शाहजी की, और अब सुनेंगे हम प्रोग्राम शामी गज़ल में अगली गज़ल मनहर उदासी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, रात दे 10:45 ते 41 सेकंड्स हो चुके ने ते तुसी FM रेनबो यानी कि 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से इंजॉय करे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है।

आ जा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आखिरी दिन ना हो जब मेरी सांसें जाना सीख रही हो, लेकिन खाली हाथ मत आना, अपने साथ गुलाब लाना और मुझे एक बार गले लगाना और इसे खामोश ही रहने देना। दुनिया को यही लगने देना कि हमारे बीच कुछ भी था ही नहीं। बस मजबूत बने रहना जब मैं तुम्हें आखिरी बार देखूं। मैं चाहता हूं कि मेरी रूह तुम्हारा चेहरा याद रखे। शायद किसी दूसरी दुनिया में हम फिर मिलें। बस याद